सुप्रभात, ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की तिथि 22, तदनुसार 12 जून 2026 और दिन शुक्रवार है। प्रातः के 5:57 होने वाले हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
2: To youth, to working life, to old age.
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेहे के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:10 हुए हैं अभी। आइए सुने दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें। कार्यक्रम में आज वार्ता का विषय है नए बाग लगाने की विधि। आइए सुनते हैं।
1: खेती की बातें कार्यक्रम सुनने वाले सभी ग्रामीण भाई बहनों को जोहार। कार्यक्रम के साथ मैं हूं प्रवीण सेठी। श्रोताओं, आज हम बात करने वाले हैं नए बाग लगाने के तरीके एवं विधि के संबंध में। जी हां, अगर हम झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड में नए बाग लगाने के लिए स्थान का चयन, सही लेआउट और गर्मियों में गड्ढे तैयार करना सबसे महत्वपूर्ण है। रोपण के लिए मिट्टी की जांच, पीएच मान, उन्नत किस्मों का चुनाव और उचित सिंचाई प्रणाली जैसे ड्रिप का उपयोग अवश्य करना होगा। झारखंड की लाल और लैटेराइट मिट्टी आम, अमरूद, लीची, कटहल, पपीता और नींबू वर्गीय फलों के लिए बहुत उपयुक्त है। झारखंड के लिए आम, आम्रपाली, मल्लिका, अमरूद की अगर हम बात करें तो इलाहाबादी सफेदा L49 और लीची की अगर हम बात करें तो शाही स्वर्णरूप का आप चयन कर सकते हैं। मई से जून के महीने में गड्ढे खोदे ताकि वे बारिश और धूप से अच्छी तरह शुद्ध हो सके। आकार की बात करें तो 1x1x1 मीटर के गड्ढे खोदे। गड्ढे की आधी मिट्टी में 15 से 20 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद, 1 से 2 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट और 50 ग्राम क्लोरोपाइरीफॉस ताकि दीमक से बचाव हो, इन्हें अच्छी तरह से मिला ले। इस मिश्रण से गड्ढों को भर दे। इसमें पौधे चारों कोने पर होते हैं और बीच की जगह में अन्य फसलें उगाई जा सकती है। इसमें पौधों के बीच एक छठा पौधा होता है जिससे वर्गाकार विधि की तुलना में 15% अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। जुलाई से अगस्त का समय पौधे लगाने के लिए सर्वोत्तम होता है। झारखंड के बागवानी विशेषज्ञों के अनुसार आम या कटहल जैसे बड़े पौधों के बीच खाली जगह का उपयोग आप कर सकते हैं। आप शुरुआती वर्षों में आम के पौधों के बीच अमरूद, पपीता या नींबू के पौधे लगा सकते हैं। इसके अलावा मौसमी सब्जियां और दलहन भी उगाए जा सकते हैं। ड्रिप सिंचाई की श्रोता मित्रों अगर हम बात करें तो पानी की बचत और हर पौधों को समान नमी देने के लिए ड्रिप सिंचाई सबसे प्रभावी है। बाग को मवेशियों और गर्म हवाओं से बचाने के लिए उत्तर पश्चिम दिशा में जामुन, आंवला या सहजन के पेड़ आप लगा सकते हैं। श्रोता मित्रों, थोड़ा सा विस्तार से अगर हम बात करें तो ऐसी जमीन चुने जहाँ पानी का भराव ना हो और पर्याप्त धूप मिले। बाग लगाने से पहले स्थानीय कृषि विभाग या झारखंड सरकार कृषि विभाग से मिट्टी की जांच आप जरूर करवा लें। खेत को समतल करें और झाड़ियों या पुरानी जड़ों को हटाकर साफ कर लें। श्रोता मित्रों, बाग लगाने के लिए सबसे अच्छी और आसान वर्गाकार विधि जिसमें पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी बराबर होती है। गड्ढों को 15 से 20 दिन खुला छोड़ दे। इसके बाद ऊपरी मिट्टी 15 से 20 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद, 1 से 2 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 50 ग्राम क्लोरोपाइरीफॉस पाउडर के मिश्रण को गड्ढे में भर दे, जैसा कि हमने पहले बताया है। रोपाई की अगर हम बात करें श्रोता मित्रों तो झारखंड में पौधे लगाने का सबसे सही समय जुलाई से अगस्त यानी बरसात का मौसम है। गड्ढे के बिल्कुल बीचों बीच छोटी थैली पॉलिथीन हटाकर पौधों को रखें। ध्यान रखें कि पौधे की मिट्टी जमीन की सतह से ऊपर ना उठे। पौधा लगाने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें और सहारा देने के लिए लकड़ी या बांस की खूंटी अवश्य लगा दें। आम और कटहल के फल के बीच की दूरी की अगर हम बात करें श्रोता मित्रों तो 10x10 मीटर की होगी। लीची और आंवले के बीच की दूरी 8x8 मीटर या 9x9 मीटर की दूरी होगी। अमरूद और नींबू के बीच की अगर हम बात करें श्रोता मित्रों तो 6x6 मीटर की दूरी होगी। श्रोता मित्रों, बहुस्तरीय फसल प्रणाली की अगर हम बात करें तो हमारे राज्य में बड़े पेड़ों जैसे आम के बीच की खाली जगह में पपीता, अमरूद या मौसमी सब्जियां लगाकर शुरुआत के सालों में अतिरिक्त आय हम प्राप्त कर सकते हैं। गर्मियों में पौधों को सूखने से बचाने और पानी की बचत के लिए बागों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का आप उपयोग अवश्य करें। तो श्रोता मित्रों, अभी आप सुन रहे थे नए बाग लगाने के तरीके एवं विधि के संबंध में। और अब मुझे यानी प्रवीण को दीजिए इजाजत। जोहार।

नए बाग लगाने की विधि, इस विषय पर वार्ता भी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें में। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर। अब आइए सुने आज का चिंतन। श्रोताओं, हम सब दिन रात काम करते हैं, इस कारण हम थकान भी महसूस करते हैं। मन ही मन सोचते हैं कि कैसे हमें थोड़ी सी शांति मिले। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन के तीन स्तर हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। इन तीनों स्तरों पर हम सभी को संतुलन बनाए रखना होता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि जब हम भौतिक स्तर पर बिल्कुल ठीक हैं, तो मानसिक स्तर का क्या सोचना। ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि मन ही तो दिन प्रतिदिन के कार्य करने या ना करने का आदेश देता है हमें। इसलिए मन के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। व्यवहारिक जीवन में हम स्वयं ही इस बात का अनुभव करते हैं। मान लीजिए हमारा मन किसी कारण से अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या ऐसी परिस्थिति में हम कोई भी काम कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ज़बरदस्ती कोई काम करने जाएंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ हद तक सफलता मिल भी जाए, किंतु 100% सफलता संभव नहीं है। इसी तरह अगर शारीरिक रूप से भी हम स्वस्थ नहीं हैं, तो भी हम कोई भी काम करने में सफल नहीं हो पाएंगे। आध्यात्मिक स्तर की बात तो काफ़ी दूर है। आखिर तक तीनों स्तरों पर कैसे संतुलन कायम किया जाए, इसके लिए तीन आवश्यक तत्वों को समझना और उसे व्यवहारिक जीवन में उतारना नितांत आवश्यक है। और ये तीन तत्व हैं आहार, आसन और साधना। हमारा आहार ऐसा हो जो शरीर के लिए सुपाच्य और फायदेमंद हो। आसन एक शांत, सहज और सुखदायक शारीरिक क्रिया है, जिसे श्वास प्रश्वास की लय के साथ विधिवत किया जाता है। आसन से शरीर को सहजता और मन को शांति मिलती है। आसन मन को सूक्ष्म और आध्यात्मिक साधना करने में मदद करता है। आध्यात्मिक योग का इस साधारण योग के साथ कोई मेल नहीं है। आध्यात्मिक योग का अर्थ एकीकरण यानी मिलन से है। इस प्रक्रिया के द्वारा ही मन मंदिर में जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलती है, और इस मिलन में जो आनंद का अनुभव होता है वही शांति है।

चिंतन अभी आप सुन रहे थे। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर इस समय श्रोता आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र के साथ हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए देशभक्ति गीत।

संवेद स्वरों में देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में लीजिए प्रस्तुत है भजन। कलाकार हैं ओम व्यास।

रामचरित मानस, माफ कीजिएगा, ओम व्यास के स्वर में भजन अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न हुआ।

आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब आइए सुने रामचरितमानस।

प्रभु की लीला और माया का अद्भुत दृश्य उपस्थित है अयोध्या में, जो सर्वत्र व्याप्त निरंजन अर्थात माया रहित निर्गुण और अजन्मा ब्रह्म है। वह भक्ति और प्रेम के वश होकर माता कौशल्या की गोद में नन्हा शिशु बनकर खेल रहा है। नील कमल और जल से भरे मेघ के समान इस बालक के शरीर में करोड़ों कामदेवों का

अनुपम मनोहारी रूप है। चरण के तलवों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह अंकित हैं। नन्हे नन्हे पांव से पैंजनी की ध्वनि मुखरित होती है तो मुनियों का मन विमोहित हो जाता है। लाल कोमल होठों से उच्चरित मधुर तोतले शब्द बहुत प्यारे लगते हैं। चिकने घुंघराले बालों को माता ने कई प्रकार से बनाया संवारा है। ऐसी ही मनोहारी छवि है पीले झंगली में लिपटे शरीर के हाथों और घुटनों के बल चलने की। बाल लीला देखने और उसके सुख का भागी होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो रहा है जिन्होंने प्रभु के चरणों में प्रीति जोड़ी है। भगवान शंकर पार्वती को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं, इस प्रकार जगत के माता पिता अवधपुर के निवासियों को सुख दे रहे हैं।

0: रामचरित मानस अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट प्रणालियां अपनाने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के सुझाव और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
2: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल

0: गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में जारी संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति का वातावरण बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर जा रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तेलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और इस समय आप हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हैं।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
3: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
5: हेलो डॉक्टर,
6: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
5: हेलो डॉक्टर,
6: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
5: हेलो डॉक्टर।

कुछ आवश्यक संदेश अभी आप सुन रहे थे। FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। सुबह के 7:10 हुए हैं। लीजिए पेशे खिदमत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुने बशीर बद्र का ये कलाम चंदन दास की आवाज़ में।

अब आइए सुने अनुराधा पौडवाल और जसवंत सिंह की आवाजों में कार्यक्रम की ये अगली गजल। शायर है मदन पाल।

अनुराधा पौडवाल, जसवंत सिंह और चंदन दास की आवाज़ों में चंद गज़लें अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। लोकगीतों के आज के इस कार्यक्रम में आइए सुने गणेश पंडित और साथियों के स्वरों में भोजपुरी लोकगीत।

गणेश पंडित और साथियों के स्वरों में भोजपुरी लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 7:35 बस होने वाले हैं। लीजिए प्रस्तुत है बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि। सुरांजलि कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं अभिरूप गुहा ठाकुरता के स्वर में रविंद्र संगीत।

अभिरूप गुहा ठाकुरदा के स्वर में रविंद्र संगीत अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में आज भेंटवार्ता का विषय है हमारे शरीर के लिए प्रोटीन का महत्व। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर श्वेता कच्छप, आइए सुनें।

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज हम बातें करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना महत्व रखता है और क्या क्या स्रोत हैं जिससे हम प्रोटीन को प्राप्त कर सकते हैं, इन सारी बातों को बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्वेता कच्छप। डॉक्टर साहिबा, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या महत्व है।
1: प्रोटीन शब्द से ही हमें इसकी महत्ता का पता चलता है, क्योंकि इस शब्द का अर्थ है होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस, या एक ग्रीक शब्द से लिया गया है जो है प्रोटियस। इसका मतलब ही होता है ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। जैसे ही एक नवजात शिशु इस दुनिया में आता है, जो पहला भोजन उसे मिलता है उसकी माँ का दूध, और उस दूध में जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं वो प्रोटीन से भरे हुए रहते हैं, और ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो शिशु की रक्षा करते हैं तरह तरह के इन्फेक्शन से, उसे स्ट्रांग बनाते हैं। और जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते जाते हैं, प्रोटीन्स का इम्पोर्टेंस उनके जीवन में, उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बढ़ता ही जाता है।
0: प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर में किस तरह से काम करता है?
1: प्रोटीन्स को तो ऐसे ही बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी कहा जाता है।
0: जी जी।
1: जैसे 70% पानी है हमारे शरीर में, 15% प्रोटीन्स है हमारे स्केलेटल मसल्स, हमारे हार्ट के मसल्स, यहाँ तक कि हमारा मस्तिष्क, हमारे नेल्स, हमारे बाल, हमारी स्किन, ये सब प्रोटीन्स के ही बने हुए हैं। इस वजह से जो बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डिंग जो होती है वो प्रोटीन्स का ही काम है। और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ही नहीं, बहुत सारे इम्पोर्टेंट फंक्शंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जैसे घर बन जाता है और मरम्मत का काम चलता रहता है, उसी तरह से प्रोटीन्स भी हमारे शरीर में मरम्मत का काम करते ही रहते।
0: कहने का मतलब यह कि अगर किसी दुर्घटनावश या फिर किसी कारण से शरीर में कहीं कट गया या फिर किसी तरह का घाव हो गया है, तो प्रोटीन उसको भरने में अहम भूमिका निभाता है।
1: जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ही हमें कोई चोट लगती है, रक्त स्राव होता है, ब्लीडिंग होता है, हम लोग अगर इस रक्त स्राव को रोकेंगे नहीं तो ब्लीड करके किसी पर्सन की डेथ हो सकती है। लेकिन उस ब्लीडिंग को रोकने का काम क्लॉटिंग फैक्टर्स करते हैं हमारे बॉडी में। क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि इस रक्त स्राव को रोकते हैं, और वहीं पर हमें पता भी चलता है कि ये क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोटीन्स हैं।
0: क्या क्या स्रोत है, किस किस स्रोत से हमें प्रोटीन ज्यादा मात्रा में मिल सकता है?
1: प्रोटीन के दो स्रोत हैं, एनिमल प्रोटीन और दूसरा प्लांट प्रोटीन।
0: अच्छा।
1: प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बने हुए होते
0: जी,
1: हैं
0: जी, जी।
1: और ये अमाइनो एसिड्स दो प्रकार के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। तो जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो हमें हमारी डाइट से ही लेना पड़ता है, जो नॉन एसेंशियल हैं वो हमारा बॉडी खुद बना सकता है। प्लांट प्रोटीन को इनकम्प्लीट प्रोटीन कहा गया है, क्योंकि ये जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे प्लांट प्रोटीन्स में मौजूद नहीं होते हैं, और इसीलिए प्लांट प्रोटीन्स जहाँ से हमें जिसके सोर्सेज हैं सोयाबीन, भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। उसके अलावा पल्सेस, दालें, है ना, लेंटिल्स, मसूर की दाल, उसके अलावा अनाज, कुछ कुछ सब्जियां जैसे कि ब्रोकली, प्लांट सोर्स से हमें ये प्रोटीन्स मिलते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये इनकम्प्लीट प्रोटीन्स हैं। सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एक ही प्रकार के भोजन में उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए एक मिक्स्ड डाइट लेना जरूरी है। जैसे कि चावल के साथ दाल लेना जरूरी है,
0: सब्जियां
1: लेना जरूरी है। एनिमल सोर्स में प्रोटीन्स कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है, क्योंकि उसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि अंडा एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, उसको रेफरेंस प्रोटीन कहा जाता है। और उसके अलावा मीट, मछली, उसके अलावा दूध, पनीर, दही, इन सब चीजों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स मिलता है। चाहे वेजिटेरियन डाइट हो या नॉन वेजिटेरियन डाइट हो, हमें एक बैलेंस डाइट लेते हुए शरीर की जरूरतों को पूरा करना चाहिए।
0: डॉक्टर साहिब, आपने काफी अच्छी और उपयोगी जानकारियां दी हमारे श्रोताओं को। उम्मीद है हमारे श्रोता आपके द्वारा कही गई बातों को समझेंगे और अपने बच्चों को सही प्रोटीन उपलब्ध कराएंगे और उनका स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर रख सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

हमारे शरीर के लिए प्रोटीन का महत्व, इस विषय पर डॉक्टर श्वेता कच्छप से ली गई भेंट वार्ता अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। बातचीत कर रहे थे राजेश कुमार। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये, FM के 102.4 MHz पर।

0: बॉडी के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली और रांची केंद्रों से समाचारों का प्रसारण होगा, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने

0: साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
1: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
1: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो केवाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीपफेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
3: We signed this year a free trade agreement with Europe.
4: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम

0: को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितुवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट

0: मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माही के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मूज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली NCR में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Center signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. US President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. In a significant development, the center has signed a historic tripartite memorandum of understanding MOU

नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति के हाथों बोकारो के सीआरपीएफ जवान को शौर्य चक्र मिलने के बाद पूरे राज्य में जश्न का माहौल। सम्मान पाकर भावुक और उत्साहित हुए जांबाज सद्दाम हुसैन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने एसआईआर कार्यक्रम के लिए एईआरओ के रिक्त पदों को जल्द भरने के दिए निर्देश। रांची के सभी बूथों पर कल से 2 दिवसीय मैपिंग शिविर। राज्य के 8 नए जिलों में जल्द शुरू होंगे आधार सेवा केंद्र। यूआईडी में 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी और भारी बारिश की जारी की चेतावनी। ऑरेंज अलर्ट जारी। और हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय दिव्यांग टी20 क्रिकेट सीरीज के लिए झारखंड के 4 प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन। निशांत, नीरज, शौकत और वागीश दिखाएंगे दम। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोकारो के सीआरपीएफ जवान सद्दाम हुसैन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है।

0: जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में दो आतंकवादियों को मात्र 25 मीटर की दूरी से सटीक प्रहार कर उन्होंने ढेर कर दिया था। राष्ट्रपति के हाथों सम्मान मिलने से सद्दाम हुसैन खासा उत्साहित।
1: सीओ साहब से सूचना मिली कि फॉरेन के कुछ टेररिस्ट हमारे एरिया के अंदर घुस चुके थे और उसी नुकसान से बचने के लिए जैसे हमें जानकारी मिली हम अपने टीम के साथ वहां गए, ऑपरेशन को सक्सेस किए और 25 मीटर की दूरी में ही आतंकवादी को मार के गिराए। आतंकवादी जो था वो फॉरेन टेररिस्ट था, वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के फिराक से अंदर घुसे थे। दो दिन की लड़ाई चली और उसको मार गिराया गया।
0: राज्य में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी यानी AERO के रिक्त 147 पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने का निर्देश दिया है। रांची में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत 13 और 14 जून को विशेष मैपिंग शिविर लगेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर यह शिविर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक लगेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने अधिकारियों को शिविरों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। राज्य में आधार नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 8 नए आधार सेवा केंद्र जल्द शुरू होंगे। ये केंद्र हजारीबाग, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, गढ़वा, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में खुलेंगे। UIDAI ने नागरिकों से केवल अधिकृत केंद्रों का उपयोग करने की अपील की है। किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1947 पर संपर्क किया जा सकता है। धनबाद गया रेलखंड पर रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इस रूट पर स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली यानी कवच तकनीक से लैस ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया। रेलवे द्वारा किया गया यह ट्रायल पूरी तरह सफल रहा। धनबाद रेल मंडल DRM अखिलेश मिश्रा ने बताया कि इस तकनीक के लागू होने से एक ही पटरी पर दो ट्रेनों के आने की स्थिति में ब्रेक अपने आप लग जाएंगे।
2: बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली है क्योंकि जिस तरह से ट्रेनें अब हम लोग चला रहे हैं बहुत ही रफ्तार बढ़ती जा रही है, ट्रेनों के बीच में जो स्पेसिंग है वो कम होती जा रही है। किसी भी तरह से अगर मानवीय चूक होती है तो ह्यूमन एरर को गार्ड करने के लिए कवच की प्रणाली है और ये एक अच्छी प्रूवन टेक्नोलॉजी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भारतवर्ष में डेवलप हुई है। ISRO और टीम ने इसका डिजाइन बनाया है।
0: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने चाईबासा में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने जिले में खाद्यान्न के उठाव, परिवहन और भंडारण की स्थिति का जायजा लिया। सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी पात्र लाभुकों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने वित्तीय प्रणालियों को नुकसान पहुंचाने वाले साइबर अपराधियों के बढ़ते खतरे पर कड़ी चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए के खनिज बकाए के त्वरित भुगतान की मांग की है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में

0: आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने रांची मेट्रो ट्रेन, पारा शिक्षकों के मानदेय और नक्सल विरोधी अभियानों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता का मुद्दा भी उठाया। इस पर झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य के हक की आवाज बुलंद की है, केंद्र बकाया तुरंत जारी करे।
1: तो नीति आयोग की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमारे राज्य के जो बकाया है वो बकाया दे दिया जाए, क्योंकि राज्य की जो राजकोषीय जो जरूरतें हैं उसको पूरी करनी है। तो एक मेट्रो रेल यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए होना चाहिए।
0: पलटवार में भाजपा प्रवक्ता अजय साह ने कहा कि राज्य सरकार राजनीतिक छोड़ केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन और आंतरिक सुरक्षा सुधारने पर ध्यान दे।
2: आपको इस बात का जवाब देना चाहिए कि बोकारो में, चाईबासा में, लातेहार में, झारखंड के अन्य जिलों में जो DMFT स्कैम हुआ है उसकी जांच कहां तक पहुंची है। 1,36,000 करोड़ के मामले में वापस से आपने झारखंड की जनता को क्यों गुमराह किया? लैंड एक्विजिशन को आप क्यों सिंप्लीफाई करना चाहते हैं? क्या आपकी मंशा वापस से RIMS-2 को या जगह जगह दोहराने की है?
0: मौसम विभाग ने आज झारखंड के कई जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विशेषकर रांची, बोकारो और जमशेदपुर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने और मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। हरियाणा के यमुनानगर में 13 से 15 जून तक आयोजित होने वाली T20 केसरी दिव्यांग क्रिकेट राष्ट्रीय सीरीज में झारखंड के 4 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इंडिया ए टीम में निशांत कुमार उपाध्याय, नीरज कुमार और शौकत अली को जगह मिली है, जबकि वागीश त्रिपाठी इंडिया बी टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये सभी खिलाड़ी रांची से रवाना हो चुके हैं। JSCS स्टेडियम में खेली जा रही झारखंड T20 लीग में आज 2 मुकाबले होंगे। पहले में छोटा नागपुर रॉयल्स का सामना कोयलांचल सुपर किंग्स से होगा, जबकि दूसरे मैच में धनबाद डायमंड्स और जमशेदपुर स्टीलर्स की टीमें आमने सामने होंगी। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा उठाए गए मुद्दों को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, झारखंड को सिर्फ खनिज राज्य ही नहीं नॉलेज हब बनाना है। प्रभात खबर की सुर्खी है, जेट प्रावधान में होगा बदलाव, 25,000 शिक्षकों को राहत। हिंदुस्तान के शब्द हैं, सर्वोच्च अदालत ने गृहणियों के कार्य की कीमत आंकी। दैनिक जागरण लिखता है, CM 29 जून को सहायक आचार्यों को देंगे नियुक्ति पत्र। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति के हाथों बोकारो के CRPF जवान को शौर्य चक्र मिलने के बाद पूरे राज्य में जश्न का माहौल। सम्मान पाकर भावुक और उत्साहित हुए जांबाज सद्दाम हुसैन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने SIR कार्यक्रम के लिए AERO के रिक्त पदों को जल्द भरने के दिए निर्देश। रांची के सभी बूथों पर कल से 2 दिवसीय मैपिंग शिविर। राज्य के 8 नए जिलों में जल्द शुरू होंगे आधार सेवा केंद्र। UIDAI ने नागरिकों से सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1947 पर संपर्क करने को कहा। मौसम विभाग ने आज रांची, बोकारो और जमशेदपुर सहित राज्य के कई हिस्सों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी और भारी बारिश की जारी की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी। और हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट सीरीज के लिए झारखंड के 4 प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन, निशांत, नीरज, शौकत और वागीश दिखाएंगे दम। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।

आकाशवाणी के दिल्ली और रांची केंद्रों से प्रसारित समाचार अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी चर्चा। आइए आज इस कार्यक्रम के तहत सुने महात्मा गांधी के विचारों पर चर्चा और महात्मा गांधी के विचारों में समय का सदुपयोग इस विषय पर अनुभा जायसवाल की वार्ता। प्रस्तुत करता है राजेश कुमार राय, वाचन स्वर है शिखा खौरी का। आइए सुनते हैं।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम गांधी चर्चा में हम सुनते हैं, बातें करते हैं महात्मा गांधी के विचारों पर। जहां तक समय के सदुपयोग की बात करें तो महात्मा गांधी के लिए समय का सदुपयोग केवल घड़ी देखना ही नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला थी। उनका मानना था कि समय ईश्वर का दिया हुआ सबसे मूल्यवान संसाधन है जिसे रचनात्मक कार्य, आत्म सुधार और सेवा में लगाया जाना चाहिए। वे एक एक पल का हिसाब रखते थे और अपना हर काम समय पर स्वयं करने में विश्वास करते थे। वे भागदौड़ के बीच भी प्रतिदिन मौन धारण करने और सामूहिक प्रार्थना के लिए समय निकालते थे जिससे मानसिक शांति और ऊर्जा मिलती थी। वो मानते थे कि समय का सदुपयोग का अर्थ है काम को खुद करना, जैसे चरखा काटना, आटा पीसना, सफाई करना या कोई भी काम करना। गांधी जी अपने दैनिक कार्य को लेकर बेहद सचेत रहते थे। यहाँ तक कि वे यात्रा के समय भी ट्रेन में पत्र लिखते थे या अन्य कार्य जो वहाँ करने लायक हो उसे निपटा लेते थे। वे संसाधनों का अपव्यय नहीं करते थे और पानी, बिजली जैसी वस्तुओं के दुरुपयोग को समय की बर्बादी मानते थे। गांधी जी का समय के प्रति ये दृष्टिकोण आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है, जो हमें आत्मनिर्भरता और उत्पादकता का संदेश देता है। महात्मा गांधी के विचारों में समय का सदुपयोग, आइए इस विषय पर सुनते हैं अनुभा जायसवाल की वार्ता।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता श्री करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी। गांधी जी के जीवन पर उनकी माता का अधिक प्रभाव रहा। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। प्यार से सब इन्हें बापू तथा महात्मा भी कहते हैं। 13 वर्ष की उम्र में ही गांधी जी का विवाह हो गया तथा उस समय उनकी पत्नी कस्तूरबा 14 वर्ष की थी। प्यार से सब उन्हें बा पुकारते थे। नवंबर 1887 में गांधी जी ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और जनवरी 1888 में उन्होंने भावनगर के सामलदस कॉलेज में दाखिला लिया और यहां से डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे लंदन गए और वहां से बैरिस्टर बनकर लौटे। इसके बाद गांधी जी भारत में आकर अपनी वकालत का अभ्यास करने लगे, लेकिन इसमें उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। उसी समय दक्षिण अफ्रीका से उन्हें एक कंपनी में कानूनी सलाहकार के रूप में काम मिला। वहां लगभग गांधी जी 20 साल तक रहे। अहिंसा और सत्याग्रह के संघर्ष से उन्होंने भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाई। उनका ये काम पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। गांधी जी ने आजीवन समय के महत्व को समझा और लोगों को भी सीख दी कि समय अनमोल है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। एक बार की बात है, उन दिनों गांधी जी साबरमती आश्रम में रह रहे थे। एक दिन पास के गांव के कुछ कार्यकर्ता गांधी जी से मिलने आए। उन्होंने अपने गांव में एक सभा का आयोजन किया था जिसमें वे गांधी जी को संबोधन के लिए आमंत्रित करना चाहते थे। गांधी जी ने अपना दूसरे दिन का कार्यक्रम देखा और उन्हें कार्यकर्ताओं से पूछा, आप लोगों ने कार्यक्रम कितने बजे निश्चित किया है? 4 बजे का समय नियत किया गया है, कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी। गांधी जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। जाने से पहले एक कार्यकर्ता ने पूछा, बापू मैं आपको लेने गाड़ी के साथ एक व्यक्ति को भेज दूंगा ताकि आपको सभा स्थल तक पहुंचने में कोई तकलीफ ना हो। गांधी जी ने उन्हें निश्चित समय पर तैयार रहने का आश्वासन दिया। इसके बाद कार्यकर्ता गांव वापस चले गए। अगले दिन गांधी जी समय पर सभा में जाने के लिए तैयार थे। वे गाड़ी की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन 4:15 बजे तक कोई भी कार्यकर्ता गाड़ी के साथ उन्हें लेने नहीं पहुंचा। सभा का समय हो रहा था। ऐसे में गांधी जी चिंतित हो उठे कि उनके समय पर नहीं पहुंचने के कारण सभी का समय बर्बाद होगा, लोगों का समय व्यर्थ न हो, इसका उन्हें एक उपाय सूझा और उन्होंने उस पर अमल भी किया। कुछ देर बाद गाड़ी लेकर कार्यकर्ता जब साबरमती आश्रम पहुंचे तो वहां गांधी जी उपस्थित नहीं थे। उन्हें वहां नहीं पाकर कार्यकर्ता आश्चर्य में पड़ गया और गांव लौट आया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि गांधी जी सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं और अपना भाषण दे रहे हैं। उपस्थित सभी लोग बड़े ही ध्यानपूर्वक गांधी जी की बातों को सुन रहे थे। सभा समाप्त हुई और वह कार्यकर्ता गांधी जी के पास गया और उनसे पूछा, बापू, मैं तो आपको लाने आश्रम गया था किंतु आप वहां नहीं थे, आप यहां कैसे आए? गांधी जी ने उत्तर दिया, जब आप 4:15 बजे तक यहां नहीं पहुंचे तो मैंने अपनी साइकिल उठाई और उसे चलाते हुए यहां आ गया। मैं अपने कारण इतने लोगों का समय व्यर्थ नहीं करना चाहता था। यह बात सुनकर कार्यकर्ता बहुत शर्मिंदा हुआ। तब गांधी जी ने उसे समय का महत्व समझाते हुए कहा, समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। गांधी जी ने सदैव समय के सदुपयोग या प्रबंधन की बात को स्वीकारा है। उनका विचार था कि कभी किसी से मैंने ये नहीं कहा कि मैं बहुत व्यस्त हूँ और अमुक काम के लिए मैं समय नहीं निकाल सकता। गांधी जी के पास छोटे बच्चे से लेकर समाज के बड़े लोगों के पत्र आते थे और वे बिना किसी देरी के हर पत्र का जवाब देते थे। आश्रम के रसोई घर में प्रतिदिन सुबह का नाश्ता करने के बाद वे सब्जी काटने का काम स्वयं करते थे। कोई छोटा या बड़ा व्यक्ति जो साबरमती आश्रम में रहता हो और यदि कभी वह बीमार पड़ जाए तो गांधी जी खुद उससे मिलते और उसके उपचार की व्यवस्था किए बिना नहीं रहते। कुछ मित्रों ने उन्हें फरियाद करते हुए कहा कि आपने अभी तक साम्यवादी साहित्य नहीं पढ़ा है। गांधी जी जेल में भोजन के समय या नाश्ता करते करते ह्यूमिनिटी अपरूटेड और रेड ब्रीड पुस्तकें पढ़ डाली। बंगाल के गांव में काम करते समय स्थानीय लोगों से अपनापन बिठा सके इसलिए उन्होंने बंगाली सीखना शुरू किया, जबकि उस समय तक गांधी जी काफी वृद्ध हो चुके थे। अस्पताल में बीमार पड़े व्यक्ति के पास बैठकर पुस्तक पढ़ना या उसके पत्रों को लिखने का काम वे वकील बनने के बाद भी करते रहे। प्रतिदिन रेडियो पर 120 सूत के तार बनाना, सुबह 4 बजे प्रार्थना करना और सुबह शाम 45 मिनट के लिए टहलने का काम भी अवश्य करते थे। गांधी जी ने दातून करते करते गीता के 13 अध्याय को कंठस्थ किया था। स्वामी आनंद के कहने पर प्रतिदिन गीता के 1 श्लोक का अनुवाद करते। इसी के कारण हमें उनकी अनासक्ति पुस्तक प्राप्त हुई। महाभारत पढ़े बिना हिंदू धर्म का मर्म या रहस्य समझना मुश्किल है, ऐसा जानकर सन 1822 में यरवडा जेल में महाभारत का 18 पर्व गांधी जी ने पढ़ डाला। गांधी जी कहते थे कि भारत देश की गौरवशाली और अनुकंपा भरी जीवन दृष्टि स्वामी विवेकानंद जी का साहित्य पढ़कर मुझ में विकसित हुई है। सार्वजनिक जीवन में इतना सक्रिय होते हुए भी उन्होंने स्वामी जी का संपूर्ण साहित्य अक्षरशः पढ़ा हुआ था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने अपने दैनिक जीवन से लेकर बड़े कार्यों तक समय के महत्व को समझा और हमें भी यह सीख दी कि समय अनमोल है, हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए।
0: महात्मा गांधी के विचारों में समय का सदुपयोग। अभी आप सुन रहे थे अनुभा जायसवाल की वार्ता और इसके साथ ही आज की गांधी चर्चा यहीं संपन्न होती है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजेश कुमार राय। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शिखा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

महात्मा गांधी के विचारों पर चर्चा और महात्मा गांधी के विचारों में समय का सदुपयोग, इस विषय पर अनुभा जायसवाल की वार्ता अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांधी चर्चा के तहत। प्रस्तुतकर्ता थे राजेश कुमार राय, वाचन स्वर था शिखा खौरी का।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
3: अब सिर्फ एक MOU से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
2: श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद से ही पूर्वोत्तर को प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखा है। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का उपयोग कर रहे हैं। चेतावनी में बताया गया कि जालसाज आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रोजगार पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं और पीड़ितों के चेहरे का डेटा एकत्र करते हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों पर भी असर होता है। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित होते हैं और खरीद सामर्थ्य तथा उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की यात्रा पर उत्तराखंड जा रही हैं। इस दौरान वे देहरादून में 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। श्रीमती मुर्मू कल देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में मुख्य अतिथि के रूप में पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मुलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुड लिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। यात्रा के दौरान श्री गोयल ज्यूरिख में स्विस कंपनियों और निवेशकों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश विस्तार के अवसरों पर चर्चा करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्ति वार्ता में मिली सफलता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध को और आगे बढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने कहा कि ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति हुई है और इसे ध्यान में रखते हुए ये अचानक बदलाव आया है। श्री ट्रंप ने ये भी संकेत दिया कि नाजुक युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने का समझौता लगभग पूरा हो चुका है। दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र में आज सवेरे एक इमारत में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि सवेरे करीब 2:25 पर सूचना मिलते ही 8 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं और 5 लोगों को बचा लिया गया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे। इस समय आप आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र के साथ हैं। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हमें सुन रहे हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। अभी इसी क्रम में लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम सुरंजना आपके लिए, सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में।
1: और जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। दुनिया के आधे से ज्यादा लोग अब शहरों में रहते हैं और ये शहर दुनिया के 3/4 ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण के जिम्मेदार हैं। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो और आबादी घनी हो, वहां बुरे मौसम, हवा में गंदापन और बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन शहर समस्या का हल भी बन सकते हैं, जैसे बेहतर सार्वजनिक परिवहन, कम गाड़ियां और अपने शहर में ही खाद्य उगाना। यह सब प्रदूषण को घटाता है और जीवन को बेहतर बनाता है। सतत योजना बनाना अब कोई विकल्प नहीं रहा, बल्कि यह एक आवश्यकता बन गया है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। आज लगभग 55% लोग पृथ्वी पर शहरों में रहते हैं और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। शहर और जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। दुनिया के आधे से ज्यादा लोग अब शहरों में रहते हैं और ये शहर दुनिया के 3/4 ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण के जिम्मेदार हैं। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो और आबादी घनी हो, वहां बुरे मौसम, हवा में गंदापन और बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन शहर समस्या का हल भी बन सकते हैं, जैसे बेहतर सार्वजनिक परिवहन, कम गाड़ियां और अपने शहर में ही खाद्य उगाना। यह सब प्रदूषण को घटाता है और जीवन को बेहतर बनाता है। सतत योजना बनाना अब कोई विकल्प नहीं रहा, बल्कि यह एक आवश्यकता बन गया है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। आज लगभग 55% लोग पृथ्वी पर शहरों में रहते हैं और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

कुछ आवश्यक संदेशों के बाद सुरंजना कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम। स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का और मैं हूं आपके रेडियो सखी श्रीति। स्वीकार कीजिए स्नेह भरा नमस्कार। आज सुरंजना कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल की आवाज में चंद फिल्मी नगमे

तू एक आईने की तरह है जिसमें मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी नज़र आती है, जहाँ जो कुछ भी बिखरा हुआ है तो हर रोज़ आकर थोड़ा थोड़ा संवार जाता है। तेरी खामोशी में मेरे लफ्ज़ बोलते हैं, तेरे होने से ही मेरे एहसासों की दुनिया आबाद है। तू दरिया सा मुझ में बहता रहता है और मैं किनारे पड़े रेत की तरह खामोशी से हर बार तुझ में समा जाया करती हूँ।

दरमियाँ हमारे ये जो कुछ फासला है, मानो जोड़ कर रखता है तुम्हें मुझसे और मुझे तुमसे। हर रोज़ कुछ कदम चल कर आती हैं ये आँखें, बस दो चार कदम पर ही हवा में लहरा कर जाने क्या सोच कर ठहर जाते हैं ये हाथ। मगर मेरा तुम तक और तुम्हारा मुझ तक पहुँचने का हर रोज़ का ये सफ़र अब अच्छा लगने लगा है, ऐसे जैसे मानो जिंदगी का हिस्सा बन चुका हो।

काश के मेरे दिल की आहों की सदाएं तेरे दिल तक पहुंच जाए, काश के दर्द के इस गहरे गर्त से तू मुझे निकाल ले जाए। इंतज़ार की लड़ी टूटने से पहले मेरी दुआ कबूल हो, मेरे सपनों की दुनिया फिर से आबाद हो, गम भी मुस्कुराने लगे और तू कहीं से आ जाए।

और श्रोताओं, इसी गाने के साथ आज का सुरंजना कार्यक्रम अब बस यहीं तक। जिन फिल्मों के गाने आज आपने इस कार्यक्रम में सुने वो फिल्में थीं कबीर सिंह, नाम शबाना, आशिकी टू और शाबित। इन सभी गानों के लिए एक ही आवाज़ थी, श्रेया घोषाल की। संगीतकार थे अमाल मलिक, रोचक कोहली, अंकित तिवारी और चिरंतन भट्ट। गीतकार थे शाद कामिल, मनोज मुंतशिर, संदीप नाथ और समीर। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये, FM के 102.4 MHz पर।

सुबह के 9:30 होने को है। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आइए सुने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन, राग है बैरागी।

0: राग बैरागी में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 MHz पर। सुबह के 10 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बारी बारी से हिंदी, अंग्रेजी और विश्व दर्पण समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू की उपस्थिति में ये पत्र हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
2: अब सिर्फ एक MOU से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
1: सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। चेतावनी में बताया गया है कि जालसाज आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रोजगार पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं और पीड़ितों के चेहरे का डेटा एकत्र करते हैं। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनीतिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ

अन्य क्षेत्रों में भी होता है। ऊर्जा सुरक्षा के विषय पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जा रही हैं। इस दौरान वे देहरादून में 132 एकड़ क्षेत्र में बने राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। श्रीमती मुर्मू कल देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IAM में मुख्य अतिथि के रूप में पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। यात्रा के दौरान श्री गोयल ज्यूरिख में स्विस कंपनियों और निवेशकों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश विस्तार के अवसरों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र में आज सुबह एक इमारत में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि तड़के करीब 2:25 पर सूचना मिलते ही 8 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं और 5 लोगों को बचाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्ति वार्ता में मिली सफलता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध को और बढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस अचानक बदलाव का कारण बताया। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: barrels per day to more than 10 times that level. In a single field, there is also a potential recovery of over rupees 15,000 crore. If oil and gas reserves across Nagaland are properly extracted, I believe it will significantly reduce our dependence on foreign countries, which currently supply us due to our shortages in this sector.
1: Center has issued an advisory about the growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. According to the advisory issued by the Indian Cybercrime Coordination Center under the Ministry of Home Affairs, cyber criminals are increasingly using AI to create realistic deepfake videos and synthetic identities. These technologies are being exploited to bypass facial authentication, liveness verification, video KYC processes, account recovery systems, and unauthorized access to financial and digital services. News just in. Renowned Indian shooting coach and former Asian Games gold medalist Jaspal Rana has passed away. He was 49. According to National Rifle Association of India President Kalikesh Narayan Singh Dev, Rana breathed his last at a Delhi hospital last night. Rana recently underwent a medical procedure after falling ill during the Indian contingent's return flight from the ISSF World Cup in Munich, Germany. Upon landing in New Delhi, he was immediately hospitalized and underwent a medical procedure to have a stent fixed. Rana was serving as a high-performance coach for Indian pistol shooters. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has stressed the need for resilient and diversified supply chains, sustained diplomatic efforts, and greater international cooperation to deal with the fallout of ongoing conflicts. Participating in a discussion on emerging powers and the new geopolitical competition at the Kultaranta talks in Finland, Dr. Jayashankar said the impact of the conflicts extends far beyond the regions where they occur. The 10th edition of the ICC Women's T20 Cricket World Cup will begin today, with host England taking on Sri Lanka in the opening match of the tournament at Edgbaston in Birmingham. The month-long tournament will be hosted across England and Wales, with the final is set to take place on 5th of July at the iconic Lord's Cricket Ground. The FIFA World Cup 2026 kicked off in Mexico City after a grand opening ceremony last night. Co-host Mexico defeated South Africa by 2-0 in the inaugural match at the Azteca Stadium. And that is the end of this news bulletin.
2: Namaskar. Akashvani se Vishw Darpan ke saath, main Mukesh Kumar. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज दो दिन के स्विट्जरलैंड दौरे पर रवाना होंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में 16 लोगों की मौत, 37 घायल। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री अलकांस और रक्षा सचिव जॉन हीली ने सैन्य निधि विवाद के चलते इस्तीफा दिया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने का समझौता लगभग पूरा हो चुका है। उन्हें आशा है कि सप्ताह के अंत में यूरोप में हस्ताक्षर किए जाएंगे। अमरीका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार न रखने और न ही खरीदने पर सहमत हो गया है। ट्रंप ने कहा कि यह समझौता सुनिश्चित करेगा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल न कर पाए, जिसे उन्होंने तेहरान के खिलाफ अमरीकी प्रशासन के दबाव अभियान का मुख्य उद्देश्य बताया। अमरीका के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से खुल जाएगा। इससे क्षेत्र में हफ्तों से चले आ रहे सैन्य तनाव और समुद्री व्यवधानों के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर दबाव कम होने की

0: लिए जाते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच मुक्त व्यापार समझौते हुए हैं।
1: We signed this year a free trade agreement with Europe.
2: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
1: To find common ground.
0: इससे पहले डॉक्टर जयशंकर अपने दो देशों के दौरे के अंतिम चरण में कुल तारंता वार्ता में भाग लेने के लिए बुल्गारिया से फिनलैंड पहुंचे। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब द्वारा आयोजित इस वार्षिक वार्ता में वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ नेता और नीति निर्माता एक साथ आए थे। विदेश मंत्री और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने बदलती भू राजनीतिक स्थिति पर विचार विमर्श किया और तेजी से अनिश्चित होते वैश्विक वातावरण में कूटनीति के महत्व पर बल दिया। उनकी मुलाकात फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता के दौरान हुई। विदेश मंत्री ने फिलीपींस की विदेश मंत्री थेरेपी पी लजारो और फिलीपींस के लोगों को देश के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत फिलीपींस के साथ रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए उत्सुक है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री मिश्री ने इस अवसर पर शुभकामनाएं दी और भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से दो दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मुलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। यात्रा के दौरान श्री गोयल ज्यूरिख में स्विस कंपनियों और निवेशकों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश विस्तार के अवसरों पर चर्चा करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री अल कांस ने रक्षा सचिव जॉन हीली के इस्तीफे के बाद स्टार्मर सरकार से इस्तीफा दे दिया है। हीली का इस्तीफा प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ सैन्य निधि को लेकर हुए विवाद के बाद हुआ है। श्री अल कांस ने कल इस्तीफा देते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि सरकार की रक्षा निवेश योजना न तो पर्याप्त रूप से परिवर्तनकारी है और न ही इसके लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध है। ये इस्तीफा हीली के उस तीखे पत्र के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर द्वारा प्रस्तावित सैन्य खर्च देश की रक्षा के लिए आवश्यक राशि से बहुत कम है। श्री हीली के स्थान पर कैबिनेट में सुरक्षा मंत्री और पूर्व ब्रिटिश सेना अधिकारी डैन जार्विस को नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJ के ईदगाह मैदान में हजारों निहत्ते प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में 16 लोग मारे गए और 37 अन्य घायल हो गए। हालांकि किफायती आटा, चावल, बिजली और बुनियादी अधिकारों की मांग को लेकर प्रदर्शन कल शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ था, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने AK-47 राइफलों से भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी जिससे हालात खराब हो गए। रावलकोट में करीब 60-70 हजार लोग पाकिस्तान के निरंतर कब्जे और क्षेत्र में उसकी नीतियों के खिलाफ नारे लगाने के लिए इकट्ठे हुए थे। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने POK में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 30 मृतकों और 200 घायलों के लिए न्याय की मांग की थी। खाई गाला गांव में निवासियों ने बाजार बंद कर दिए और हिंसा के खिलाफ मार्च निकाला। विरोध प्रदर्शन के बाद सड़कें और खेत खलिहान खून से लथपथ हैं और शोक संतप्त परिवार अपने प्रियजनों की तलाश कर रहे हैं। अमेरिका ने क्यूबा की सरकारी तेल और गैस कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिए हैं जिससे क्यूबा पर दबाव बढ़ गया है। ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार पर आरोप लगाया है कि वो ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल दमन जारी रखने और अपने नेतृत्व को समृद्ध करने के लिए कर रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश के अंतर्गत क्यूबा की सरकारी ऊर्जा कंपनी यूनियन क्यूबा पेट्रोलियम

को प्रतिबंधित घोषित करने की घोषणा की है। श्री रूबियो ने कहा कि हर्षद सादत की तरह ऊर्जा को भी क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार ने लंबे समय से दमन और स्वार्थपूर्ण सत्ता के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। अमरीकी विदेश विभाग ने आरोप लगाया कि दशकों से बुनियादी ढांचे में कम निवेश के कारण आम क्यूबा वासियों को ईंधन की कमी और बार बार बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। श्रीलंका 2026 के वैश्विक शांति सूचकांक में 14 पायदान पर पहुंच गया है, जिससे उसे दक्षिण एशिया में दूसरा स्थान मिल गया है और यह इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है। यह रैंकिंग लगभग 3 दशक के गृह युद्ध के बाद देश के निरंतर सुधार को दर्शाती है, जो 2009 में समाप्त हुआ था और राजनीतिक स्थिरता, सार्वजनिक सुरक्षा और सामाजिक सामंजस्य को मजबूत करने के प्रयासों का परिणाम है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन के स्विट्जरलैंड दौरे पर रवाना होंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में 16 लोगों की मौत और 37 अन्य घायल। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार अभी आप सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। एक बार फिर गीत संगीत का सिलसिला यानी फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर हाजिर है। सुनवाएंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: नौकरी लग गई।
1: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
5: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
4: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
5: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
6: सुनो ना।
7: हाँ?
6: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
7: तो रोका किसने है? हाँ?
6: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
7: मुझसे।
6: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
7: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
6: पर उससे मेरा क्या फायदा?
7: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
6: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
7: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870001-4242।
6: ओ 870001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ, 870001-4242।

0: चार दो पर।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

कुछ आवश्यक संदेशों के बाद अब लेकर आए हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके लिए। उम्मीद है आप जहां कहीं भी हैं हमें सुन रहे हैं और हमसे जुड़े हुए हैं। इस संगीत में सफर की हम सफर में हूं आपकी रेडियो सखी श्रीति। नमस्कार दोस्तों, और आप सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।

कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मिस्टर एक्स फिल्म के गाने से। अरिजीत सिंह की आवाज़ में है ये गाना, संगीतबद्ध किया है जीत गांगुली ने और शब्द रचना है रश्मि सिंह की। आइए सुनते हैं।

केके की आवाज़ में जिस्म फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। संगीत निर्देशन था एमएम क्रीम का और गीत लिखा था सईद कादरी ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्रेया घोषाल की आवाज़ में, सलीम सुलेमान के संगीत निर्देशन में अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा हुआ ये गाना, फिल्म बैंड बाजा बारात से।

राहत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में पाप फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। अमजद इस्लाम अमजद का लिखा हुआ गीत था, संगीतबद्ध किया था शाही ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं रोग फिल्म का गाना उदित नारायण की आवाज़ में। संगीत निर्देशन MM क्रीम का है, गीत लिखा है नीलेश मिश्रा ने।

0: अमित मिश्रा और निधि मोहन की आवाज़ों में लखनऊ सेंट्रल फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। रोचक कोहली का संगीत निर्देशन था और गीत लिखा था अधीश वर्मा ने। और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।
1: हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आप सुनेंगे इसी चैनल पर।

FM के 102.4 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। दिन के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनिएगा हिंदी में समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। अमेरिका के नेताओं और बिजनेस लीडर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। कांग्रेस सदस्यों, अमरीकी सेनेटर और बड़ी अमरीकी कंपनियों के अधिकारियों ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी। वारबर्ग पिंक्स के चेयरमैन चार्ल्स आर, प्रतिनिधि फ्रेंच हिल, प्रतिनिधि ब्रेड शर्मन, सेनेटर सिंडी हाइड स्मिथ और सिस्को के जीतू पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि उस भरोसे और विश्वास को दिखाती है जो भारत के लोगों ने उनके नेतृत्व पर जताया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। ऊर्जा सुरक्षा के विषय पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य तथा उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। पश्चिम एशिया की स्थिति पर अंतोनियो गुतरश ने सभी पक्षों से युद्ध विराम को पूरी तरह लागू करने तथा स्थिति को और बिगड़ने से रोकने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्ति वार्ता में मिली सफलता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध को और बढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के उच्चस्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में हुई प्रगति को इस अचानक बदलाव का कारण बताया। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जर्मनी में आयोजित ISSF विश्व कप से स्वदेश वापसी के समय तबीयत खराब होने के बाद उन्हें नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल करके मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल, माहे के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। दिन के 11:05 हुए हैं। हम हाजिर हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर को लेकर।

0: Floyd.
1: नमस्कार, जमशेदपुर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रेडियो सखी श्रद्धा का प्यार भरा आदाब नमस्कार।

मित्रों, दुनिया में हम कई रिश्तों के साथ जन्म लेते हैं, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, पड़ोसी, लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी है जो किसी नाम का मोहताज नहीं होता, किसी खून के रिश्ते से नहीं जुड़ा होता, फिर भी सबसे बड़ा होता है। ये रिश्ता होता है

सहारा बन जाते हैं। सड़क पर गिरा हुआ कोई अनजान व्यक्ति हो, अस्पताल में मदद की ज़रूरत वाला कोई मरीज हो, या फिर किसी ज़रूरतमंद की सहायता करने वाला कोई अजनबी, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि इंसानियत आज भी जिंदा है।

मायने ही बदलता जा रहा है। लोग हर चीज़ों की कीमत पैसे से लगाते हैं, जबकि इंसानियत का मतलब सिर्फ पैसे से मदद करना नहीं है, बल्कि किसी दुखी व्यक्ति को दो मीठे शब्द कहना, किसी बुजुर्ग की इज्जत करना, किसी ज़रूरतमंद को भोजन खिला देना, किसी परेशान व्यक्ति की बातों को सुनना, किसी टूटे हुए इंसान की हौसला अफजाई करना, ये सब इंसानियत के रूप हैं। आज दुनिया की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में लोग इतने मशगूल हो गए हैं कि दूसरों के दुख दर्द को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम या हमारे समाज के लोग पूरे दिन में सिर्फ एक अच्छा काम करने का संकल्प ले लें, तो यकीन मानिए ये दुनिया काफ़ी खूबसूरत हो जाएगी। कहा भी गया है, इंसान का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब। जब किसी की मदद की जाती है, तब केवल और केवल इंसानियत बोलती है।

मित्रों, इतिहास इस बात का गवाह है कि दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने इंसानियत को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने लोगों को हमेशा जोड़ने का काम किया, तोड़ने का नहीं। उन्होंने प्रेम, करुणा और सेवा का संदेश दिया। आज जब हम समाज में बढ़ती दूरियों को आज हमारे समाज में काफ़ी दूरियां बढ़ती जा रही हैं, यहाँ तक कि रिश्तों में भी दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तनाव और स्वार्थ को देखते हैं तो महसूस होता है कि इंसानियत की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है। क्योंकि जब इंसानियत ज़िंदा रहती है तब उम्मीदें ज़िंदा रहती हैं। ज़रा सोचिए ना, जब आपके दिए भोजन से किसी का पेट भरता है तो कैसा महसूस होता है। जब आपकी छोटी सी मदद से किसी मासूम के चेहरे पर राहत दिखाई देती है तब जो खुशी मिलती है वो किसी दौलत से कम नहीं होती। किसी की मदद के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं है, बड़ा दिल, बड़ी सोच होना बहुत ज़रूरी है। आप हमारे आसपास ऐसे अनेक लोगों की मदद कर सकते हैं जो कई परेशानियों में घिरे हुए हैं। हो सकता है उन्हें हमारी या आपके साथ की ज़रूरत हो। ऐसे में अगर हम उनका हाथ थाम लें तो शायद उनका सफ़र आसान हो जाए। क्योंकि इंसानियत का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ये बिना स्वार्थ के होती है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें जहाँ भी अवसर मिले हम किसी न किसी की मदद करेंगे और इंसानियत का परिचय देंगे, किसी के मुस्कुराहट की वजह बनेंगे। क्योंकि आखिर में लोग ये याद नहीं रखते कि हमारे पास कितनी दौलत थी, कितना ऊंचा पद था, कितनी हमारी शोहरत थी। लोग ये याद रखते हैं कि कितने लोगों के जीवन में खुशी और उम्मीद की रोशनी हमने पहुंचाई। इसी खूबसूरत सोच को हमेशा जिंदा रखने के लिए आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है। अपनापन फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गीत के बाद हम बातें करेंगे एक ऐसे विषय की जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा है, एक ऐसी चर्चा जो दिल में उम्मीद जगाती है, आंखों में चमक भरती है। और अब हम बातें करेंगे सपने वो नहीं होते हैं जो आपको सोने ना दें। दोस्तों, जब हम सपना ये शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में रात को देखे जाने वाले ख्वाब आते हैं, लेकिन असली सपने वे नहीं होते जो नींद में दिखाई दें और सुबह उठते ही भूल जाएं। असली सपने वे होते हैं जो जागती आँखों से देखे जाते हैं, जो हमारे दिल में एक रोशनी जगाते हैं, कुछ करने की रोशनी, जो हमें चैन से रहने नहीं देते और जो हमें हर दिन कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई सपना ज़रूर होता है। दोस्तों, सपनों का आकार बड़ा हो या छोटा ये ज़रूरी नहीं, उनका महत्व बड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सपना ही वो पहली सीढ़ी है जो इंसान को साधारण से असाधारण बनाने की राह दिखाती है। केवल सपने को देखना ही काफ़ी नहीं होता, सपने को सच करने के लिए मेहनत, धैर्य, संघर्ष और निरंतर प्रयास की ज़रूरत भी होती है। अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि रास्ता काफ़ी कठिन होता है, मुश्किलें आती हैं, लोग हतोत्साहित करते हैं, परिस्थितियां साथ नहीं देती, लेकिन हर बड़ी सफलता के पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी होती है। जो कठिनाइयों से डरते हैं वे हार जाते हैं, लेकिन जो लोग हर चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक दिन मंजिल उनके कदम चूमती है। मित्रों, सपनों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमें उम्मीद देना नहीं छोड़ती। जब सब मुश्किल लगता है तब भी एक सपना हमें आगे बढ़ने की वजह जो है वो बताने लगता है। सपना भी उसी वक्त पूरा होता है जब आप प्रयास करते हैं, अगर प्रयास ना हो तो वो केवल कल्पना बनकर रह जाता है। अपनी गलतियों से सीखना और हार ना मानना ही सपनों को हकीकत में बदल देता है। कई बार सफलता देर से मिलती है, कई बार मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम सपना ही देखना छोड़ दें। तो मित्रों, आप अपने सपने को कभी छोटा ना समझें। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है और आप पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती।

0: रमन महादेवन की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे प्रसून जोशी का लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीतबद्ध किया तारे जमीन पर फिल्म का ये गीत।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
3: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
4: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में। आज इस कार्यक्रम के साथ मैं इशरत

मित्रों, आज का दौर डिजिटल युग का दौर है। स्मार्टफोन और इंटरनेट ने हमारी दुनिया को हमारी हथेली में समेट दिया है। कुछ सेकंड की छोटी छोटी वीडियो, जिन्हें हम रील्स कहते हैं, आज करोड़ों लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी है। सुबह उठते ही फोन हाथ में आता है और कई बार रात को सोने से पहले तक उंगलियां रील्स पर चलती हैं। रील्स का सबसे बड़ा आकर्षण है कि ये कम समय में भरपूर मनोरंजन देती है। हंसी मजाक, डांस, मोटिवेशन, कुकिंग, ट्रेवल, शिक्षा और नई नई जानकारियां, सब कुछ ही सेकंड में देखने को मिल जाता है। यही वजह है कि युवाओं के बीच इसका क्रेज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, हर चीज के दो पहलू होते हैं। जहां रील्स हमें मनोरंजन और जानकारी देती है, वहीं कई बार ये हमारी कीमती समय की चोरी भी कर लेती है। हम सोचते हैं कि केवल 5 मिनट रील्स देखेंगे, लेकिन कब आधा घंटा या 1 घंटा बीत जाता है, इसका पता ही नहीं चलता। युवाओं के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती समय का सही उपयोग है। पढ़ाई, करियर, परिवार और अपने सपनों के लिए समय निकालना जरूरी है। अगर रील्स मनोरंजन का माध्यम बनकर रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वे हमारी आदत बन जाए तो ये चिंता का विषय बन सकता है। कई युवा आज रील्स के माध्यम से अपनी प्रतिभा भी दुनिया के सामने ला रहे हैं। कोई अच्छा गाता है, कोई नृत्य करता है, कोई कॉमेडी करता है, तो कोई ज्ञानवर्धक बातें साझा करता है। सोशल मीडिया ने ऐसे हजारों युवाओं को पहचान भी दिलाई है, जिन्हें पहले मंच नहीं मिल पाता था। लेकिन प्रसिद्धि पाने की होड़ में कई बार लोग ऐसे वीडियो भी बना लेते हैं जो समाज या खुद उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी के साथ किया जाए। दोस्तों, हमें यह याद रखना होगा कि मोबाइल और सोशल मीडिया हमारे लिए बने हैं, हम उनके लिए नहीं। तकनीक का सही उपयोग हमें आगे बढ़ाता है, जबकि उसका अत्यधिक उपयोग हमारे लक्ष्य से हमें दूर कर देता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम रील्स देखें, उनसे सीखें, उनका आनंद लें, लेकिन अपने समय और प्राथमिकताओं का भी ध्यान रखें। अगर हम तकनीक और जीवन के बीच संतुलन बना लें, तो सही रील्स हमारे लिए प्रेरणा और सफलता का माध्यम बन सकती है।

फिल्म संजू का ये गीत अभी आपने सुना सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीत लिखा था शेखर अस्तित्व ने,

मित्रों बच्चे किसी देश का भविष्य होते हैं, ये बात हम सभी जानते हैं। उनके नन्ही कंधों पर कल का भारत, कल की दुनिया और आने वाले समय की उम्मीदें टिकी होती हैं। बचपन जीवन का सबसे खूबसूरत दौर माना जाता है। ये वो समय होता है जब बच्चे के हाथों में किताबें होनी चाहिए और मन में सीखने की उत्सुकता। लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया के कई बच्चे ऐसे हैं जिनका बचपन काम की कठोर परिस्थितियों में बीत जाता है। इसी गंभीर समस्या की ओर पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2002 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य है बाल श्रम के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाना और बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा तथा बेहतर भविष्य का अधिकार दिलाने के लिए समाज को प्रेरित करना। मित्रों बाल श्रम एक सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि ये बच्चों के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है, सुरक्षित वातावरण में रहने का अधिकार है और सम्मानजनक जीवन जीने का भी उन्हें पूरा अधिकार है। लेकिन गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और जागरूकता की कमी के कारण आज भी अनेक बच्चे बाल श्रम का शिकार हो जाते हैं। बाल श्रम निषेध दिवस ये याद दिलाता है कि बच्चों को मजदूर नहीं विद्यार्थी बनना है, उन्हें बोझ नहीं उठाना है बल्कि अपने सपनों को उड़ान देने का अवसर मिलना चाहिए। आज कई सरकारी योजनाएं और सामाजिक संगठन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और बाल श्रम को समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक समाज का हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तब तक ये लड़ाई अधूरी रहेगी। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे आसपास रहने वाला कोई भी बच्चा स्कूल छोड़कर काम करने पर मजबूर ना हो। मित्रों बाल श्रम को रोकना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बच्चे किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं और साथ ही ये तो भगवान की मूरत भी होते हैं।

इंदिवर का लिखा ये खूबसूरत सा नगमा भी आपने सुना इस जानकी की आवाज़ में। तर्ज बनाई थी बप्पी लहरी ने और फिल्म का नाम था प्यार के काबिल।

और इस गीत के बाद हम याद कर रहे हैं एक ऐसी अदाकारा को जिनकी मुस्कान में मासूमियत थी, अभिनय में गहराई थी और नृत्य में अद्भुत सौंदर्य। हम बात कर रहे हैं हिंदी और दक्षिण भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री पद्मिनी की, जिनकी आज जयंती है। 12 जून 1932 को जन्मी पद्मिनी ने बहुत छोटी उम्र से ही नृत्य और अभिनय की दुनिया में कदम रखा, जिनकी बहनें भी प्रसिद्ध कलाकार थीं। शास्त्रीय नृत्य में उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मंच पर आते ही दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते थे। मित्रों, पद्मिनी केवल एक अभिनेत्री नहीं थी, वे भारतीय संस्कृति और कला की प्रतिनिधि भी थीं। उन्होंने अपने लंबे फिल्मी

सफ़र में लगभग 250 फिल्मों में काम किया और हर भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाया। हिंदी सिनेमा में उनकी पहचान खास तौर पर उन फिल्मों से बनी जिसमें उन्होंने अपनी अदाकारी और नृत्य का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है और मेरा नाम जोकर जैसी फिल्मों में उनका योगदान आज भी याद किया जाता है। 1960 और 70 के दशक में उन्होंने कई यादगार फिल्मों में काम किया। फिल्म काजल में उनके अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने सराहा। उनके नृत्य प्रस्तुतियां आज भी कला प्रेमियों के लिए प्रेरणा है। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं और सुनते हैं उन्हीं पर फिल्माया ये गीत।

जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीत शैलेंद्र के थे और तर्ज बनाई थी

शंकर जयकिशन ने। और इस गीत के साथ कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर से मुझे यानी इशरत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12 बजने ही वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब से बस थोड़ी देर बाद।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
1: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर

बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नागरिक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 854 अंक बढ़कर 74,687 पर और निफ्टी 221 अंक की वृद्धि से 23,382 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भावगीत।

भावगीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, कुछ गीत समय के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि और भी खास बन जाते हैं। कार्यक्रम का पहला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, ये गीत उन अनकहे जज्बातों की कहानी है जो बिछड़ने के बाद भी दिल में जिंदा रहते हैं। इंतजार, याद और मोहब्बत की खूबसूरत भावनाओं से सजा ये गीत सीधे दिल को छू जाता है। तो आइए, यादों और एहसासों से भरे इस खूबसूरत सफर पर चलते हैं और सुनते हैं ये मधुर गीत।

मित्रों, जिंदगी की राहें चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर किसी अपने का साथ मिल जाए तो हर सफर आसान और हर पल खूबसूरत बन जाता है। प्यार, विश्वास और अपनापन, यही वो एहसास है जो रिश्तों को खास बनाते हैं। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं को शब्दों और सुरों में पिरोया गया है इस मधुर गीत में, जो हमें याद दिलाता है कि किसी अपने का साथ जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत होती है।

कार्यक्रम भावगीत अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। मित्रों, जिंदगी की खूबसूरती उसके हर छोटे बड़े एहसास में छिपी होती है। कभी खुशी, कभी गम, कभी उम्मीद तो कभी यादों का कारवां। इन्हीं भावनाओं को बेहद खूबसूरती से शब्दों और सुरों में पिरोया गया है फिल्म शोर के इस गीत में। आइए सुनते हैं ये नगमा।

ये था कार्यक्रम का आखिरी गीत। और अब चलते चलते हम अपने श्रोताओं को उन फिल्मों के नाम बता दें जिनका गीत अभी आप सुन रहे थे। एतबार, प्रेम गीत, जाबाज और शोर। इसी के साथ भावगीत का ये सफ़र अब ख़त्म हुआ।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इसके तहत आइए सुनते हैं राग मुल्तानी में सत्य किंकर बंदोपाध्याय का ख्याल गायन।

रैग भीम पलासी में भी आप सुन रहे थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का ख्याल गायन। इसी के साथ कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब से बस थोड़ी देर बाद, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूर संचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूर संचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला विकास को दी प्राथमिकता। स्वयं सहायता समूहों और तकनीक से नारी शक्ति बन रही आत्मनिर्भर। झारखंड हाई कोर्ट ने जेलों में आधी या एक तिहाई सजा पूरी कर चुके कैदियों के रिहाई के मामले में की सुनवाई। राज्य सरकार से मांगा लिखित जवाब। राज्य सरकार ने गरीब परिवारों का बकाया राशन एक मुश्त देने की प्रक्रिया की तेज। धोती साड़ी, नमक और दाल का बैकलॉग खत्म करने के लिए टेंडर प्रक्रिया तेज। स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में कई मसलों पर चर्चा। सरकार ने 7 दिनों के भीतर आधुनिक अस्पतालों के लिए मांगा विस्तृत प्रस्ताव। और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और भारतीय पिस्टल टीम के मुख्य कोच जसपाल राणा का 49 की आयु में दिल्ली में निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूहों की मदद से महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं। उन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे आधुनिक क्षेत्रों में नारी शक्ति की बढ़ती भागीदारी पर प्रसन्नता जताई और उन्हें राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताया।
1: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल,
2: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया, हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
1: महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों की तेजी से सुनवाई हो, दोषियों को तेजी से सजा हो,
2: 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर लाखों मुस्लिम बहनों का जीवन तबाह होने से बचाया है।
0: जामताड़ा जिले में किसानों, व्यवसायियों और समाज सेवियों सहित हर वर्ग के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को बेमिसाल बताया है। प्रगतिशील किसान अभय कुमार सिंह सहित हर वर्ग के लोगों ने केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं।
3: किसानों के लिए उन्होंने जो काम किए बहुत ही सराहनीय है। हर एक किसान को साल में 6,000 3 किस्त में देकर उन्नत कृषि करने का एक बहुत सुनहरा मौका दिया। और आज किसान पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपया में अपने समय पर बीज खाद खरीद कर खेतों में जो अपना काम कर रहे हैं, उन्नत बीज उन्नत खाद के माध्यम से कम जगह में अच्छे से अधिक फसल उपजाने का काम आज किसान कर रहे हैं, जिसमें किसान काफी खुशहाल है।
0: झारखंड उच्च न्यायालय ने जेलों में आधी या एक तिहाई सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को याचिकाकर्ता के सुझावों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस याचिका में करीब 1,000 कैदियों की रिहाई के लिए लिखित सुझाव दिए गए हैं। अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। राज्य सरकार ने 68 लाख से अधिक गरीब परिवारों का बकाया राशन और कल्याणकारी सामग्रियां एक मुश्त देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर विभाग ने धोती साड़ी, नमक और दाल योजना का बैकलॉग खत्म करने के लिए टेंडर शुरू कर दिया है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि जल्द ही सभी पात्र परिवारों को बकाया सामग्री मिल जाएगी। राज्य में स्वास्थ्य ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए

0: विंग ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान और मजबूत की है। चालू सत्र में इस विंग की रैंकिंग और प्रतिष्ठा में बड़ा सुधार हुआ है। लगभग 10,200 से अधिक स्वयंसेवकों के साथ यह विंग झारखंड के सबसे सक्रिय छात्र संगठनों में से एक बनकर उभरा है। यह विंग राज्य में वृक्षारोपण, रक्तदान, सड़क सुरक्षा, स्वच्छता, डिजिटल साक्षरता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक अभियानों में लगातार अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने दुमका में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मंत्रियों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष पर लगाए आरोपों से साफ है कि महागठबंधन बिखर चुका है। राज्यसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महज 16 विधायक होने के बावजूद कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा है, जबकि 24 विधायकों वाली भाजपा निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का समर्थन कर रही है। उन्होंने कांग्रेस को अपने विधायकों को एकजुट रखने की सलाह दी।
1: तरह से कांग्रेस जो है उछल कूद कर रही है, इससे प्रतीत हो रहा है कि हमारे समर्थित प्रत्याशी नाथवाने जी पिछले बार के अधिक वोट जीत करके राज्यसभा में जाए। कांग्रेस का इस तरह से विधानसभा के अंदर छाती पीट रहा है, इससे पता चलता है कि कांग्रेस टूट के कगार पर है। मंत्री एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई है।
0: देवघर पुलिस ने जसीडीह स्टेशन के पास से 6 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर अंतर्राज्यीय ब्राउन शुगर नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इनके पास से 76 ग्राम मादक पदार्थ और नकद बरामद किए गए हैं। एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि आरोपी रेल मार्ग से नशा लाकर देवघर में सप्लाई करते थे।
2: सूचना के आधार पे हमारी टीम वहाँ पे रेड करने गई तो उस टीम ने नजर रखा और फिर देखा कि 2 लोग ट्रेन से आए और वहाँ ब्राउन शुगर डिलीवर करने के लिए आए थे। उनके बदले 63,000 रुपए ये लोग नगद देने वाले थे और इनको ट्रांजैक्शन करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है और 76.19 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामद की हुई है।
0: घरेलू शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक लगभग 1% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 854 अंक बढ़कर 74,687 पर और निफ्टी 221 अंक बढ़कर 23,382 पर पहुंच गया। इधर राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,36,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,42,000 रुपए प्रति किलो है। भारत के दिग्गज पिस्टल निशानेबाज और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव ने उनके निधन की पुष्टि की है। म्यूनिख विश्व कप से लौटने के बाद बीमार होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हार्ट सर्जरी भी हुई थी। वे भारतीय पिस्टल टीम के मुख्य प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। उनके निधन से खेल जगत में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक जताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि निशानेबाजी में असाधारण उपलब्धियों से देश को गौरवान्वित करने वाले राणा का जाना खेल जगत की अपूर्णीय क्षति है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें बेहद मिलनसार बताते हुए देश में निशानेबाजी को लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान को सराहा। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला विकास को दी प्राथमिकता। स्वयं सहायता समूहों और तकनीक से नारी शक्ति बन रही आत्मनिर्भर। झारखंड हाई कोर्ट ने जेलों में आधी या एक तिहाई सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई के मामले में की सुनवाई। राज्य सरकार से मांगा लिखित जवाब। राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को बकाया राशन एक मुश्त देने की प्रक्रिया की तेज। धोती साड़ी, नमक और दाल का बैकलॉग खत्म करने के लिए टेंडर प्रक्रिया

गया तेज। स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में कई मसलों पर चर्चा। सरकार ने 7 दिनों के भीतर आधुनिक अस्पतालों के लिए मांगा विस्तृत प्रस्ताव। और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और भारतीय पिस्टल टीम के मुख्य कोच जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी रेडियो से केशवत। कबूल कीजिए हमारा आदाब, नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
7: ज्ञान विज्ञान
8: इतिहास के पन्नों से,
9: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
10: मौसम का मिजाज,
7: अपने शहर की खबरें,
9: बातों मुलाकातों के साथ
10: सुरीला मनोरंजन
7: और भी बहुत कुछ।
6: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
10: दिन के 11:05 से 12 बजे तक
9: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
6: नमस्कार जमशेदपुर।
0: कार्यक्रम फिल्म संगीत में आइए सुनते हैं ये खूबसूरत संगीत।

इट्स माई लाइफ फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, जावेद अली और हमसिका अय्यर की आवाज़ें थी। नीलेश मिश्र ने इस गीत को लिखा था और शंकर एहसान लॉय ने संगीतबद्ध किया था।

0: फिल्म झुंड का ये गीत भी आपने सुना। अजय अतुल की आवाज़ थी, अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा था और अजय अतुल ने संगीतबद्ध किया था। कार्यक्रम फिल्म से गीत भी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। अगला गीत इस अंतराल के बाद।
1: डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फ़ोन नंबर है 06572960445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

0: Akashwadi at 90.
1: बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

रे खत्म हुआ और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं फिल्म करतूत का ये गीत। जावेद अली और साधना सरगम की आवाज़ें हैं, इरशाद खां सिकंदर ने इस गीत को लिखा है।

जुबिन नौटियाल की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। कुमार का लिखा ये खूबसूरत सा गीत, फिल्म का नाम था कोई जाने ना। और अब लीजिए सुनिए फिल्म नज़रअंदाज का ये गीत।

0: फिल्म नजरअंदाज का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। अगला गीत इस अंतराल के बाद।
1: प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता, यह यूनेस्को का संदेश है। पृथ्वी की जलवायु करोड़ों सालों से प्राकृतिक कारणों से बदलती रही है, जिसमें ग्रहों की गति, सूर्य उत्पादन और ब्रह्मांड से आने वाले प्रभाव। यह हजारों सालों में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन होते हैं, कभी हिमयुग कभी गर्म अवधि। जलवायु को बदलने वाले मुख्य कारण हैं पृथ्वी के कक्ष का आकार, उसकी अक्षीय झुकाव और ज्वालामुखी गतिविधि। समुद्री धाराएं और बर्फ का आवरण भी जलवायु पर असर डालते हैं। बड़े उल्कापिंडों के प्रभाव से भी अचानक जलवायु परिवर्तन का कारण बना है। यह एक रोचक तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का वैश्विक तापमान परिवर्तन पृथ्वी को हिमयुग या गर्म युग में बदल सकता है।
0: ब्रेक के बाद आइए हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम।

द पावर फिल्म का ये गीत भी आपने सुना अरिजीत सिंह और राज पंडित की आवाज़ों में। गीत लिखा था कुमार ने और संगीत सलीम सुलेमान का था। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम।

जुबिन नौटियाल और अर्श किंग की आवाज़ों में भी आपने सुना संदीप श्रीवास्तव का लिखा ये गीत फिल्म लूडो से। संगीत प्रीतम का था। और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

सुनिधि चौहान और जितेंद्र सिंह की आवाज़ों में अभी आपने सुना कुंदन विद्यार्थी का लिखा ये नगमा। फिल्म का नाम था धक धक और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये सुरीला सफ़र अब ख़त्म हुआ। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब से बस थोड़ी देर बाद, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
2: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम

0: एक मंच पे हम रख रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित SCO सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, SCO का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपए और प्रतिमाह 24,00,000 रुपए तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
0: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम फिल्म संगीत अब से बस थोड़ी देर बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: फिल्म संगीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो सखी इशरत का प्यार भरा आदाब नमस्कार। आइए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत।

0: उदित नारायण की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत। शब्द रचना समीर की थी और संगीत नदीम श्रवण का था। कार्यक्रम का अगला गीत इस अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ब्रेक के बाद लीजिए सुनिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये गीत। उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और तर्ज बनाई है जतिन ललित ने।

लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज़ों में भी आपने सुना हीरो फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

शान और कैलाश खीर की आवाज़ों में भी आप सुन रहे थे फना फिल्म का ये गीत। और ये था कार्यक्रम का आखिरी गीत। इस गीत के साथ फिल्म संगीत अब खत्म हुआ। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से अब से बस थोड़ी देर बाद।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट का कर दिया है। नया समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। एजेंसी ने कहा कि NTA यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट UG की परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित हो। एक रिपोर्ट।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। NTA ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करे। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI आधार धारकों के लिए पहुंच और सुविधा में सुधार करने के लिए झारखंड भर में आधार सेवा के बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत कर रहा है। आधार नामांकन और अद्यतन सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए UIDAI ने नागरिकों से केवल अधिकृत केंद्रों से ही सेवाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से रांची स्थित लोक भवन में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने मुलाकात कर पंचायतों को आवंटित अनुदान राशि से योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी ज्ञापन सौंपा। शिष्टमंडल ने पंचायत स्तर पर विकास कार्यों के सुचारू और समयबद्ध संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश शीघ्र जारी कराने की मांग की। आज भारत आदिवासी पार्टी के एक शिष्टमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से रांची स्थित लोक भवन में मुलाकात कर जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने खनन प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा सारंडा क्षेत्र के पात्र निवासियों को वनाधिकार पट्टा प्रदान करने की दिशा में पहल करने का अनुरोध भी किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ACB के विशेष न्यायाधीश ओमकार नाथ चौधरी की अदालत ने खूंटी अंचल के कर्मचारी सत्यनारायण राम को ₹500 रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराया है। वर्ष 2006 के इस मामले में अदालत ने उन्हें 1 वर्ष के कारावास और ₹15,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जमशेदपुर में नशामुक्त भारत अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त राजीव रंजन ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेगा। जिले के उपायुक्त राजीव रंजन ने कहा कि नशे की लत व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार की आर्थिक स्थिति और बच्चों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
3: राज्य में नशा मुक्ति अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत हम लोग चाहेंगे कि लोग नशा से अपने आप को मुक्त रखें। नशा परिवार के आर्थिक स्रोत को भी काफी क्षति पहुंचाता है और खास करके बच्चों की पढ़ाई लिखाई जिस घर में नशा होता है वहां पे प्रभावित हो जाता है। इसीलिए हम लोग ये संकल्प ले रहे हैं कि अपने परिवार को नशा से मुक्त रखें, जिससे हम अपने देश को विकास के रास्ते पे ले जाएं।
2: और अब मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने झारखंड के पूर्वी हिस्सों में प्रवेश कर लिया है। मॉनसून की वर्तमान स्थिति, इसके आगे बढ़ने की संभावनाओं तथा राज्य में संभावित मौसम परिस्थितियों के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग रांची द्वारा आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आज से आगाज हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस प्रतियोगिता का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। इस बार पहली बार 12 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और अब प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत करती हूं आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है
2: जी।
3: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: सिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
3: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
3: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
3: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
3: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
3: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
2: जी,
3: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
3: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
3: श्रोताओ, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
2: जी,
3: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
2: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
3: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
2: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
3: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
2: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
3: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओ, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
2: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
3: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CITNCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
2: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है। और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
3: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
4: हर पल चलती जाती चींटी,
3: श्रम का राग सुनाती चींटी,
4: श्रम का राग सुनाती चींटी,
3: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
4: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
3: दाना चुनकर लाती चींटी,
4: दाना चुनकर लाती चींटी,
3: सचमुच कैसी कलाकार है,
4: सचमुच कैसी कलाकार है,
3: घर को खूब सजाती चींटी,
4: घर को खूब सजाती चींटी,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
4: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
4: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: नहीं कभी घबराती चींटी,
4: नहीं कभी घबराती चींटी,
3: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
4: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
3: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
4: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
3: काम बड़े करके दिखलाती,
4: काम बड़े करके दिखलाती,
3: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
4: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
3: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
4: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
3: हमको यही सिखाती चींटी,
4: हमको यही सिखाती चींटी।
3: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं? एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम अब से बस थोड़ी देर बाद।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। इसके तहत आइए सुनते हैं रचना भटियाली में सितार वादन। कलाकार हैं इमदाद खान।

रचना भटियाली में अभी आप सुन रहे थे इमदाद खान का सितार वादन। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। इसके तहत आइए सुनते हैं सोमराय तिर्की और साथियों की आवाजों में उरांव लोकगीत।

सोमरा तिर्की और साथियों की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे ओराव लोकगीत। इसी के साथ झारखंड के लोकगीतों का कार्यक्रम अब संपन्न हुआ।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से अब से बस थोड़ी देर बाद।

0: समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट का कर दिया है। नया समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। एजेंसी ने कहा कि NTA यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट UG की परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित हो। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI आधार धारकों के लिए पहुंच और सुविधा में सुधार करने के लिए झारखंड भर में आधार सेवा के बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत कर रहा है। आधार नामांकन और अद्यतन सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए UIDAI ने नागरिकों से केवल अधिकृत केंद्रों से ही सेवाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया है। गोड्डा पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 28 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। नगर थाना प्रभारी दिनेश कुमार महली ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर चपरासी टोला में छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान राहुल कुमार साह और विपिन सोनी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सरायकेला खरसावां जिला पुलिस ने भीषण गर्मी में ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की सुविधा के लिए बैटरी संचालित कूलिंग जैकेट उपलब्ध कराने की पहल शुरू की है। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने प्रथम चरण में 6 ट्रैफिक जवानों को विशेष जैकेट प्रदान किए। SP ने बताया कि एक बार चार्ज होने पर यह जैकेट करीब 6 घंटे तक ठंडक प्रदान करती है और आगे सभी ट्रैफिक जवानों को यह सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज दक्षिण पश्चिम मानसून ने झारखंड के पूर्वी हिस्सों में प्रवेश कर लिया है। मानसून की वर्तमान स्थिति, इसके आगे बढ़ने की संभावनाओं तथा राज्य में संभावित मौसम परिस्थितियों के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग रांची द्वारा आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: समाचार मुख्यांश अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और अब पेश है बज्म कव्वाली। फनकार हैं हबीब पेंटर।

खजू क्योंकि भूख धूप लगे साया नहीं और भूख लगे फल दू तो साजन को घर दूर है जैसे लंबी खजू चढ़े सो प्रेम रस चखे और गिरे तो

समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है हुजूर भक्त के।

कौन अग्नि से तेज है के का जरते कारी तो मिला जवाब कि जल से पतला ज्ञान है, जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी। भाई क्रोध अग्नि से तेज है, गुस्सा अग्नि से तेज है और कलंक का जरते कारी, इसलिए नजर अंजाम पर रखना है दुनिया देखने वाले। यहाँ मंजिल पे खो जाते हैं मंजिल देखने वाले। अरे बहुत ही

ये काले मुंह की घूंघची और तुले हमारे साथ, ये काले मुंह की रत्ती और तुले हमारे साथ, तो बोली।

बहुत कठिन है डगर पन घट की, तो हरम और दैर के झगड़े कहाँ तक कोई सुलझाए, हरम और दैर के झगड़े कहाँ तक कोई सुलझाए। जिसे हर तरह फुर्सत हो वो इस मैदान में आए, क्योंकि न इनकी मंजिलें सीधी न इनका रास्ता सीधा, इधर पत्थर का पूजन है तो इधर है मतलबी सजदा, यह है मंदिर का शहदाई और यह है मस्जिद का दिलदादा, इसे है स्वर्ग का लालच तो यह है जन्नत का मतवाला, इधर भी राह में चक्कर इधर भी राह में चक्कर, इधर काशी में है पत्थर इधर काबे में है पत्थर, इधर पत्थर का पूजन है तो इधर पत्थर को बोसा है, समझ में।

इधर पंडित अकड़ते हैं कि वो काशी में रहता है, और इधर है शेख जी नादा कि वो काबे में रहता है। यानी जैसे

बंद और ईश्वर कैद शिवानंद में, स्वर्ग पे कब्जा पंडित जी का, जन्नत अल्लाह वालन में। भाई राम की पड़ गई खींचा तानी, राम फंसे जंजा।

लगी सामरा सकी सुमंज धार हम सोट की बात नहीं है चैन जिगर में याद रहत नागर नटी अब हीरा लाल जवाहर मोती शोभा वाके मोर मुकट की तो जल भरने को चली बाली हाथ झाड़ सिर धर मटकी तो छुम छगदी के पाँव के बजे बिछुआ पम पगदी के पाँव की पायल खटकी सुम छगदी के शीश पे धरी मटकी तो झूम जगदी के जल में जा मटकी वही खड़ा था झुंड सखिल का अब जाय नारुल में भटकी कहाँ गए वो कृष्ण सखी मोए बात बता दो झटपट की तो क्या गोकुल में रास रचत के सैर करत बंसी बटकी इतना सुन के तभी नार ने सर से मटकी धरपट की बहुत

बहुत कठिन है डगर पनघट की, कोई गुल को तरसता है और कोई गुल को मसलता है, कोई महवे नजारा

सूली पे चढ़ता है, किसी की खाल खिंचती है, कोई दुनिया में फलता है। हबीब अब क्या कहूँ, बस मुख्तसर ये है, जो उस पर जान देता है वही बर्बाद रहता है।

मन कर हटकी मैं दध बेचन जात वृंदावन लपत झपत पटकी मटकी अनत देश की अलम गुजरिया अलम देश की अलम गुजरिया फूली फिरे भटकी भटकी बहुत कर।

हबीब पेंटर और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे ये कव्वाली। और अब आइए सुनते हैं साबरी ब्रदर्स की आवाज़ में ये कव्वाली।

इन्हें दीवाना बनने की जरूरत है। लेकिन ये मुस्लिम मुस्लिम यही कहते हैं कि मस्जिद में आ मुस्लिम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साबरी ब्रदर की आवाज़ में कव्वाली। आज के लिए बस इतना ही, अगली प्रस्तुति होगी फिल्म संगीत की। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 4:30 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का पहला गाना।

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों को अभी आप सुन रहे थे हम तुम्हारे हैं सनम, इस फिल्म के लिए इस गाने में शब्द रचना समीर की थी और संगीत निर्देशन निखिल विनय का।

सोनू निगम की आवाज़ में संघर्ष फिल्म का ये नगमा अभी आप सुन रहे थे। इसके बोल लिखे थे समीर ने और इसकी धुन बनाई थी जतिन ललित ने। कार्यक्रम का अगला गाना आइए सुनते हैं हीरो फिल्म से लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और इसकी धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ये गाना श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में फिल्म शान से। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने।

विजयपथ फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे अलीशा चिनॉय की आवाज़ में। फैज़ अनवर का लिखा गीत था और संगीत दिया था अनु मलिक ने।

0: छिछोरे फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़ को, अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत और प्रीतम का संगीत। इसके साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। दीजिए इजाज़त अपने रेडियो दोस्त विभा को। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM बैंड के 102.4 MHz पर। शाम के 5 बजने ही वाले हैं अगला प्रसारण आकाशवाणी रांची से।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट का कर दिया है। नया समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। एजेंसी ने कहा कि NTA यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट UG की परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित हो। पलामू में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अवैध खनन के खिलाफ देर रात छापेमारी कर 3 ट्रेलर और 1 पोकलेन मशीन जब्त कराई। छतरपुर थाना क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में की गई इस कार्रवाई में एक अंतर्राज्यीय खनन गिरोह के सक्रिय होने की जानकारी सामने आई है। मंत्री ने कहा कि अवैध खनन से राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह पुलिस ने मधुबन थाना क्षेत्र के दलांचल करई गांव में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में हत्या के पीछे पारिवारिक भूमि विवाद और जादू टोना को लेकर चल रहा विवाद मुख्य कारण पाया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि सभी आरोपी मृतक के गोतिया पक्ष के हैं और हत्या की साजिश में शामिल थे। पलामू जिले में सोशल मीडिया पर देशी कट्टा के साथ स्टेटस लगाना एक युवक को महंगा पड़ गया। हरिहरगंज थाना क्षेत्र के सरसोत गांव निवासी 19 वर्षीय अभय कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने उसके निशानदेही पर 2 देशी हथियार बरामद किए हैं और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरायकेला खरसावां जिले में पहली बार महिला खिलाड़ियों के लिए जिला स्तरीय फुटबॉल लीग का आयोजन किया जाएगा। जिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने बताया कि 25वीं जिला फुटबॉल लीग 2026 का आयोजन 24 जून से 1 जुलाई तक खरसावां के अर्जुना स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे थे समाचार मुख्यांश। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM बैंड के 102.4 MHz पर। शाम के 5:02 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है युवा श्रोताओं को संबोधित दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आकाशवाणी जमशेदपुर FM 102.4 मेगाहर्ट्ज से आप सभी श्रोताओं का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवानी में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज की तारीख है 12 जून और ये दिन बड़ा ही खास है। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। हाँ, वो दिन जब पूरी दुनिया मिलकर ये बात कहती है कि बचपन किताबों में होना चाहिए, खेल के मैदानों में होना चाहिए, ना कि कारखानों में, ढाबों पर या किसी घर में बर्तन मांजते हुए। तो आज का एपिसोड काफ़ी दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। हम बात करेंगे बाल श्रम की, फिर बात करेंगे महिलाओं के सम्मान की, क्योंकि दोस्तों एक सभ्य समाज वही है जहां औरतों को इज्जत मिलती है। फिर सड़कों पर तेज़ रफ्तार का कहर और सड़क सुरक्षा पर चर्चा करेंगे, और अंत में आपको ले चलेंगे एक वर्चुअल ट्रिप पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ओर। अंडमान और निकोबार जो भारत के उस हिस्सों में है जिसे बहुतों ने नहीं देखा है, लेकिन कईयों की ख्वाहिश है कि एक बार ज़रूर यहाँ जाया जाए, और कई लोग तो जानते भी नहीं यहाँ के बारे में, पूरी तरीके से वंचित है। लेकिन यह हमारे भारत का एक अहम हिस्सा है और हमें ज़रूर इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: दोस्तों, हर साल आज के दिन पूरी दुनिया में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। ये दिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने साल 2002 में शुरू किया था। मकसद बस एक, दुनिया का ध्यान बच्चों से करवाई जा रही मजदूरी की तरफ खींचना और इसे रोकने के लिए कदम उठाना। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो जाहिर सी बात है कि बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए, ये तो सभी को पता है। लेकिन दोस्तों, जानते हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनाइसेफ और ILO इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में आज भी करीब 16 करोड़ बच्चे बाल श्रम में फंसे हुए हैं। 16 करोड़, ये संख्या इतनी बड़ी है कि अगर ये सब मिलकर एक देश बना ले तो दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश होगा, सिर्फ आबादी के हिसाब से अगर चला जाए तो। और भारत की बात करें तो हमारे देश में करोड़ों बच्चे अभी भी किसी न किसी रूप में काम कर रहे हैं, चाय की दुकानों पर, ईंट भट्टों पर, घरों में, कारखानों में, यहाँ तक कि कूड़ा बीनते हुए सड़कों पर। और सबसे दुखद बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर बच्चे 5 से 14 वर्ष के हैं, वो उम्र जब उनके हाथ में कलम होनी चाहिए ना कि औजारे। अब सवाल ये है कि बाल श्रम क्यों होता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है गरीबी। जब घर में खाना नहीं होता तो माँ बाप के पास कोई विकल्प नहीं बचता। दूसरी वजह है शिक्षा की कमी। कहीं स्कूल है नहीं, कहीं स्कूल है तो शिक्षक नहीं, और कहीं अगर ये दोनों हैं तो अच्छे इक्विपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह है अवेयरनेस की कमी। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि बच्चों से काम कराना कानूनन अपराध है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ कानून बना देने से बात नहीं बनती। असली बदलाव तब आएगा जब आप और हम मिलकर जिम्मेदारी लेंगे। दोस्तों, बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। अगर हम उनका बचपन छीन रहे हैं तो हम अपने देश का भविष्य छीन रहे हैं। तो आज ये संकल्प लेते हैं कि हर बच्चों को शिक्षा, हर बचपन को आज़ादी। इसी भाव के साथ सुनते हैं ये गीत।

अभी आपने सुना तारे जमीन पर फिल्म का टाइटल ट्रैक, जिसे गाया है शंकर महादेवन ने और बोल थे प्रसून जोशी के, और संगीतकार है शंकर एहसान लॉय। दोस्तों, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, ये बात हजारों साल पहले की गई थी। लेकिन सवाल ये है, क्या आज हम सच में इस पर अमल कर रहे हैं क्या? दोस्तों, हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां एक तरफ महिलाएं अंतरिक्ष में जा रही है, जहां देश की प्रेसिडेंट और फाइनेंस मिनिस्टर रह चुकी है, ओलंपिक में मेडल्स ला रही हैं, वहीं दूसरी तरफ घरेलू हिंसा और कार्यस्थल पर उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। सिर्फ टीजिंग, ईव टीजिंग, छेड़छाड़ के मामलों को बस मजाक कहकर टाल दिया जाता है, और लड़की इससे क्या पढ़ाना लिखाना वाली सोच, ये तो अभी तक भी जीवित है। अब बात करते हैं कि सम्मान का मतलब क्या है। सम्मान का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप वुमेन्स डे पर फेसबुक पे एक पोस्ट डाल दे या व्हाट्सएप स्टेटस लगा दे कि वुमेन्स आर ग्रेट। सम्मान इनमें नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में होती है। सम्मान यह है कि घर में बेटी और बेटों में फर्क ना करा जाए। सम्मान यह है कि अगर कोई महिला देर रात काम से लौटे तो उस पर उंगली ना उठाए। सम्मान यह है कि रसोई घर या अन्य घरेलू कामकाज सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं बने और सिर्फ उन पर इसका भार ना आए। सम्मान यह है कि नहीं का मतलब नहीं है, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे कार्यस्थल में हो या फिर कहीं भी। दोस्तों, एक सभ्य समाज बनाना

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: दोस्तों, अब हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह बेहद संवेदनशील है, क्योंकि ये हम सबकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा है, सड़क सुरक्षा। आए दिन सड़क हादसों की खबर आते रहती है। इन दुर्घटनाओं का सबसे प्रमुख कारण ओवर स्पीडिंग है, यानी तेज़ गति। अक्सर ज़्यादातर प्राणघाती दुर्घटनाओं में स्पीडिंग एक प्रमुख कारक होती है। हमें लगता है कि अरे 5 मिनट बचा लूँगा, लेकिन वो 5 मिनट बचाने के चक्कर में कभी कभी पूरी ज़िंदगी चली जाती है। अपनी भी और दूसरों की भी कुछ बातें जिनका मैं चाहता हूं आप सभी ध्यान रखें। हेलमेट और सीट बेल्ट ये विकल्प नहीं है बल्कि लाइफ सेवर है। हेलमेट पहनने से दो पहिया वाहनों में मौत का खतरा 40% तक कम हो जाता है, ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। स्पीड लिमिट को स्वीकारें और नियमित तय की गति पर ही वाहन चलाएं। शहर में जो स्पीड लिमिट दी गई है और हाईवे पर जो लिमिट है, ये लिमिट ऐसे ही नहीं बनाई गई है, इनका सख्त रूप से पालन करें। कभी भी ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करें, मदिरा पान तो क्या, बल्कि किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन कर वाहन नहीं चलाए। आप खुद को तो सही पर दूसरों की ही जान को खतरे में डाल रहे हैं। गाड़ी चलाते समय फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करें, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दोस्तों, रफ्तार ज़िंदगी में होनी चाहिए, सड़क पर नहीं। गाड़ी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए है, ना कि हॉस्पिटल। और यह तय करना सिर्फ हमारे हाथ में है, तो अगली बार जब एक्सेलरेटर दबाए तो एक क्षण रुक कर सोचिए, घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है। चलिए सुनते हैं इस पर लोगों का क्या कहना है।
4: नमस्ते, मैं राहुल जमशेदपुर से। मेरा मानना है कि रोड पर गाड़ी चलाना सिर्फ स्टाइल दिखाने की बात नहीं, जिम्मेदारी की बात होती है। आजकल कुछ लोग 2 मिनट जल्दी पहुंचने के चक्कर में या हीरो बनने के चक्कर में इतनी तेज़ गाड़ी चलाते हैं जैसे रोड उनके बाप की प्रॉपर्टी हो। लेकिन भाई, रोड पर सिर्फ तुम नहीं होते, बच्चे, बुजुर्ग और बहुत सारे लोग होते हैं। इसीलिए स्पीड से ज़्यादा सेफ्टी को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो, सीट बेल्ट पहनो, हेलमेट पहनो और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल से दूर रहो। रील बाद में भी देख सकते हो, पहले घर तो पहुंच जाओ सही सलामत। मेरे हिसाब से असली मर्दानगी और असली स्वैग गाड़ी उड़ाने में नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर बनने में है। जो अपनी और दूसरों की सेफ्टी का ध्यान रखे वही असली बंदा है। तो भाई, कूल बनना है तो स्टंट

0: आज नहीं, रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर बनो। सेफ ड्राइविंग ना सिर्फ आपकी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी सुरक्षित रखता है। थैंक यू।
1: नमस्ते, मैं निधि सिंह, जमशेदपुर से। मुझे लगता है कि रोड पर गाड़ी हमेशा जिम्मेदारी से चलानी चाहिए। आजकल कई लोग कूल दिखने के लिए और जल्दी पहुंचने के चक्कर में बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि रोड पर सिर्फ हम नहीं होते, हमारे आसपास बच्चे, बुजुर्ग और बहुत से लोग होते हैं। इसलिए स्पीड से ज्यादा सेफ्टी को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, सीट बेल्ट या हेलमेट का यूज जरूर करें और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन से दूर रहें। मेरे हिसाब से असली कूल बनना है तो रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर बनिए। सेफ ड्राइविंग ना सिर्फ आपकी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी सुरक्षित रखती है। थैंक यू।
2: मित्रों, अभी तक हमने काफी गहरी और गंभीर मुद्दों पर चर्चा की, तो चलिए अब थोड़ा मूड चेंज करते हैं। आज ले चलते हैं आपको एक वर्चुअल ट्रिप पर, एक ऐसी जगह जो भारत का हिस्सा है लेकिन भारत के मुख्य भूमि से बहुत दूर है। समुद्र के बीच हरे नीले पानी से घिरी हुई अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कुल मिलाकर 572 द्वीपें हैं यहाँ पे इस समूह में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 37 द्वीपों पर लोग रहते हैं, बाकी निर्जन है, यानी जानवरों के अलावा कोई भी नहीं। यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अब बात करते हैं प्रकृति और खूबसूरती की। तो दोस्तों, अंडमान के समुद्री तटे दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचेस में गिने जाते हैं। राधा नगर बीच को एशिया का बेस्ट बीच का खिताब मिल चुका है दोस्तों। हैवलॉक आइलैंड, जिसे अब स्वराज द्वीप कहा जाता है, यहाँ का क्रिस्टल क्लियर पानी, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्केलिंग, ये अनुभव ऐसे है कि मालदीव भी फीका पड़ जाए दोस्तों। नील आइलैंड, जो अब शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है, यहाँ के प्राकृतिक पुल एक भूवैज्ञानिक चमत्कार है। बारातांग आइलैंड पर लाइमस्टोन केव्स यानी चूना पत्थर की गुफाएं, और मड वॉल्केनोज यानी मिट्टी के ज्वालामुखी। जी हाँ, भारत में मड वॉल्केनोज भी है, ये बहुत कम लोगों को पता है। अंडमान सिर्फ टूरिज्म नहीं है, ये हमारे देश के सामरिक महत्व में भी अहम भूमिका निभाता है। भारत की ट्राई सर्विस मिलिट्री कमांड यानी थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों को जॉइंट कमांड अंडमान और निकोबार में ही करा जाता है। इधर कुछ इंडिजीनियस ट्राइब्स भी रहते हैं, जैसे कि जरावन सेंटेनलीस, ओंगे और ग्रेट अंडमानीज, ये दुनिया की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है। सेंटेनलीस तो बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार का संपर्क भी नहीं रखते, और भारत सरकार ने द्वीप पर जाने से मना कर दिया। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में आप नहीं कदम रख सकते, वरना आपको सजा हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको कभी मौका मिले तो अंडमान और निकोबार ज़रूर जाइए। वो जगह आपको सिखाएगी कि भारत सिर्फ मेनलैंड नहीं है, भारत बहुत बड़ा है, और अंडमान की खूबसूरती और डाइवर्सिटी से आपको ज़रूर प्यार हो जाएगा। इसी प्रेम भाव के साथ सुनते हैं अगला गीत।

0: दोस्तों, तो आज हमने बातें की विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर, कि हर बच्चा एक अच्छे बचपन का हकदार होता है। बात की महिलाओं के सम्मान की, जहां हर महिलाओं को बराबरी इज्जत मिले और अब सपने जीने की आज़ादी मिले। फिर हमने चर्चा किया सड़क सुरक्षा के ऊपर, कि तेज़ रफ्तार का नशा ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं है। और आखिर में हमने अंडमान और निकोबार की सैर की, अपने देश के उस हिस्से को जाना जो समुद्र के बीच और भारत की शान बनकर खड़ा है। दोस्तों, युवानी बस एक कार्यक्रम नहीं है, ये एक सोच है, ये एक आवाज़ है जो कहती है, हम युवा ज़रूर है लेकिन गैर जिम्मेदार नहीं। बदलाव छोटा या बड़ा मायने नहीं रखता, शुरुआत हमसे होती है। आज युवानी में बस इतना ही। अविनाश, आकाशवाणी जमशेदपुर से, FM 102.4 MHz से आपसे फिर मुलाकात होगी, नई बातों के साथ, नए जोश के साथ। नमस्कार।
1: कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM बैंड के 102.4 MHz पर। शाम के 5:30 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं श्रमिक श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम कल कारखाने।

0: इस कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को संजय प्रसाद का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम आप लोगों को बाल श्रम, सामाजिक अभिशाप और इसके समाधान के विषय पर एक वार्ता सुनवाएंगे। साथ ही कुछ फिल्मी गीतों के माध्यम से हम आप लोगों के मनोरंजन का भी ख्याल रखेंगे और साथ ही ग्राम ज्योति योजना के विषय पर भी जानकारी देंगे। पर सबसे पहले आ जाइए, हम बात करते हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर एक ऐसे गंभीर सामाजिक मुद्दे पर जो न केवल बच्चों के वर्तमान को प्रभावित करता है बल्कि देश के भविष्य को भी कमजोर करता है। जी हाँ, ये समस्या है बाल मजदूरी, जिसे सही मायने में एक सामाजिक अभिशाप कहा जा सकता है। बचपन जीवन का सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण दौर होता है। ये समय शिक्षा, खेलकूद, सीखने और सपने देखने का होता है। लेकिन जब कोई बच्चा स्कूल की किताबों की जगह ईंटे भट्टों में, कारखानों में, दुकानों में, ढाबों में या घरेलू कामों में लगा दिया जाता है तो उनका बचपन छिन जाता है। बाल मजदूरी बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। बाल मजदूरी के पीछे कई कारण हैं। गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक असमानता, जागरूकता की कमी तथा सस्ते श्रम की मांग इसके प्रमुख कारण हैं। आर्थिक मजबूरियों के कारण कई परिवार अपने बच्चों को काम पर भेज देते हैं, लेकिन ये समझना आवश्यक है कि बाल मजदूरी गरीबी का समाधान नहीं बल्कि गरीबी के दुष्चक्र को और मजबूत करने वाली समस्या है। भारत सहित विश्व के अनेक देशों में बाल श्रम रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। हमारे देश में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी व्यवसाय में काम में लगाना कानूनन अपराध है। साथ ही बच्चों को शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त है। सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। हर वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और ये संदेश देना है कि हर बच्चे को सुरक्षित, स्वस्थ और शिक्षित बचपन का अधिकार मिल सके। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि बाल श्रम के विरुद्ध लड़ाई केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि हम अपने आसपास किसी बच्चे को मजदूरी करते देखें तो उसे सामान्य बात मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें संबंधित अधिकारियों को सूचना देना चाहिए तथा परिवार को बच्चों की शिक्षा के महत्व के बारे में भी जागरूक करना चाहिए। समाज, विद्यालय, अभिभावक और नागरिक संगठन से मिलकर इस समस्या का अस्थायी समाधान खोजने की ओर हम लोग अग्रसर हो सकते हैं। आइए इस विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर हम संकल्प लें कि किसी भी बच्चे का बचपन मजदूरी की भेंट ना चढ़े। हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान, अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिले और यही एक विकसित और संवेदनशील समाज की पहचान है। श्रोता मित्रों, अब आइए हम आप लोगों को इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए एक वार्ता सुनवाते हैं। वार्ताकार हैं रितेश कुमार और वार्ता का विषय है बाल श्रम, सामाजिक अभिशाप और इसके समाधान।
1: श्रम एक सामाजिक अभिशाप और समाधान। बाल श्रम का अर्थ है बच्चों के उनकी उम्र के अनुसार अनुचित, कठिन या खतरनाक कार्य करवाना। यह न सिर्फ उनके बचपन को छीन लेता है बल्कि उनके भविष्य को भी अंधकारमय बना देता है। बाल श्रम आज भी एक गंभीर समस्या है जो देश के विकास में बाधक है। यह एक ऐसा अभिशाप है जो बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाल बचपन से दूर कर देता है। बाल श्रम के कारण इस प्रकार है। पहला, गरीबी। अधिकांश बाल श्रमिक आर्थिक मजबूरी में काम करते हैं। दूसरा, शिक्षा की कमी। अशिक्षित माता पिता बच्चों को स्कूल भेजने की जगह काम पर लगा देते हैं। तीसरा, बाल श्रम के प्रति सामाजिक स्वीकार्यता, कुछ क्षेत्रों में यह सामान्य माना जाता है। चौथा, सस्ते श्रमिक की मांग। दुकानों, ढाबों, कारखानों में सस्ते श्रमिक के रूप में बच्चों का शोषण होता है। इसके दुष्परिणाम इस प्रकार है। बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। उन्हें उचित शिक्षा और बचपन से वंचित होना पड़ता है। बाल श्रमिकों के साथ अक्सर शोषण, हिंसा और असमान व्यवहार होता है। समाज में असमानता और अपराध का स्तर बढ़ता है। इसके समाधान के उपाय कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि शिक्षा का प्रचार प्रसार। हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। सख्त कानूनी कार्रवाई। बाल श्रम करवाने वालों पर कठिन दंड लागू होना चाहिए। जन जागरूकता अभियान। लोगों को समझाना जरूरी है कि बाल श्रम बच्चों का अधिकार छीनता है। गरीब बच्चों की आर्थिक सहायता। सरकारी योजनाओं के माध्यम से परिवारों को सहयोग देना चाहिए ताकि बच्चों को काम पर न भेजना पड़े। स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका। एनजीओ बच्चों को बचाने और उन्हें शिक्षित करने का

0: काम कर सकते हैं।
1: भारत में बाल श्रम एक गंभीर सामाजिक और कानूनी मुद्दा है। इसे रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं जिनका उद्देश्य बच्चों को शिक्षा और सुरक्षित बचपन प्रदान करना है, लेकिन इन कारणों की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े होते हैं क्योंकि जमीनी हकीकत पर बाल श्रम अभी भी अनेक क्षेत्रों में मौजूद है। कानूनों की प्रभावशीलता की बात करें तो वो कुछ हद तक शहरी क्षेत्र में जागरूकता और कानून के चलते बाल श्रम में कमी आई है। शिक्षा की पहुंच बढ़ी है जिससे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। पुलिस और श्रम विभाग की निगरानी से कुछ स्थानों पर सुधार हुआ है। इसमें चुनौतियां, पहला कानून का सही पालन न होना, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में नियमों की अनदेखी होती है। दूसरा भ्रष्टाचार और कमजोर निगरानी, कई बार बाल श्रम कराने वाले लोगों की सजा नहीं मिलती है। तीसरा शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच की कमी, स्कूलों की स्थिति खराब होने से बच्चे वापस काम पर लौटते हैं। गरीबी और बेरोजगारी, कानून से ज्यादा असर जीवन की जरूरतों का होता है। परिवार की मजबूरी, माता पिता बच्चों को आय का स्रोत मानते हैं। बाल श्रम का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वह है गरीबी। जब एक परिवार के पास रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त आय नहीं होती तो बच्चे ही आय का साधन बन जाते हैं। इस प्रकार गरीबी और बाल श्रम के बीच एक दुष्चक्र बन जाता है जिससे निकलना आसान नहीं होता। गरीबी कैसे बढ़ावा देती है बाल श्रम को? आर्थिक मजबूरी, गरीब परिवारों को दो वक्त की रोटी और बच्चों के काम के लिए भेजना पड़ता है। शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता का अभाव, गरीब इलाकों में स्कूल दूर या खराब स्थिति में होते हैं जिससे पढ़ाई की जगह काम को प्राथमिकता मिलती है। परिवार का दृष्टिकोण, जब परिवार को लगता है कि बच्चा काम करेगा तो कुछ पैसे आएंगे तो शिक्षा के बजाय बाल श्रम को चुनते हैं। सरकारी योजनाओं की जानकारी न होना, बहुत से गरीब परिवार यह नहीं जानते कि सरकार बच्चों की शिक्षा और भोजन के लिए सहायता देती है। बाल श्रम निषेध कानून पर अब चर्चा करते हैं। बाल श्रम न केवल बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बनाता है बल्कि समाज की प्रगति में भी बाधा उत्पन्न करता है। इसी कारण भारत सरकार ने बच्चों को बाल श्रम से बचाने के लिए बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम सहित कई कानून बनाए हैं जो बच्चों को काम से हटाकर शिक्षा और सुरक्षित बचपन की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 यह भारत का प्रमुख कानून है जो बाल श्रम पर रोक लगाता है और उसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कार्यस्थल पर काम न रखना प्रतिबंधित है। कुछ खतरनाक व्यवसायों जैसे खदान, पटाखा फैक्ट्री, रसायन उद्योग आदि में 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों को काम पर नहीं रखा जा सकता। गैर खतरनाक कार्यों में कुछ सीमित परिस्थितियों में काम करने की अनुमति दी गई, जिसे बाद में संशोधित किया गया। 2016 में हुआ महत्वपूर्ण संशोधन, इस संशोधन ने कानून को और अधिक सख्त बनाया। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सभी प्रकार के रोजगार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किए गए, चाहे कार्य खतरनाक हो या न हो। 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों में कार्य करने पर प्रतिबंधित किया गया। माता पिता को केवल पहली बार अपराध पर दंड में छूट दी गई है, परंतु बार बार नियम तोड़ने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है। बाल कलाकारों को अपवाद के रूप में रखा गया है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 370 और 374 बच्चों की बंधुआ मजदूरी या जबरन काम कराने पर सजा का प्रावधान है। पॉस्को एक्ट 2012 कार्यस्थलों पर बच्चों के यौन शोषण से सुरक्षा। कानून की चुनौतियां, ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी, गरीब परिवारों की आर्थिक मजबूरी, निगरानी यंत्र का कमजोर होना, कई बार बाल श्रम को घरेलू कार्य के रूप में छिपा दिया जाता है। समाधान के उपाय, सख्त कानूनी कार्रवाई और नियमित निरीक्षण, हर बच्चों को स्कूल से जोड़ना, शिक्षा को आकर्षक बनाना, जन जागरूकता अभियान और प्रचार, गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा, NGO और समाज की सक्रिय भागीदारी। बाल श्रम निषेध कानून केवल एक कानून दस्तावेज नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य की रक्षा की एक मजबूत ढाल है, लेकिन इसे पूरी तरह सफल बनाने के लिए समाज, सरकार और नागरिकों को मिलकर प्रयास करना होगा। अब हर बच्चे स्कूल जाएंगे और बचपन मुस्कुराएगा, तभी यह कानून सच्चे अर्थों में सफल कहलाएगा। बाल श्रम उन्मूलन में समाज और सरकार की भूमिका की बात करें तो बाल श्रम केवल कानून से नहीं रोका जा सकता है, इसके लिए समाज और सरकार दोनों की संयुक्त भागीदारी आवश्यक है। जब तक समाज सजग होगा, सरकार सक्रिय रूप से योजनाओं को जमीन पर नहीं उतारेगी, तब तक बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति नहीं मिलेगी। सरकार की भूमिका, कानून बनाना और उसे लागू करना। सरकार ने बाल

0: निषेध के कई कानून बनाए हैं, जैसे शिक्षा की व्यवस्था, सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा, मिड डे मील, किताबें, वर्दी आदि बच्चों को स्कूल जोड़ने के लिए जरूरी कदम है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर भी जोर दिया जाना चाहिए। आर्थिक सहायता और योजनाएं, गरीब परिवारों को रोजगार, राशन, स्वास्थ्य और आवास संबंधी योजनाओं के जरिए सहयोग देना, ताकि वे बच्चों के काम पर न भेजें। स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति और कौशल विकास कार्यक्रम भी कारगर हो सकते हैं। बाल श्रम के विरुद्ध निगरानी तंत्र, श्रम विभाग, बाल अधिकार आयोग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन को मिलकर निगरानी करनी चाहिए। बाल श्रम करवाने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। समाज की भूमिका, जागरूकता फैलाना, समाज को समझना होगा कि बच्चों का काम करना उनका अधिकार छीनता है। गांव-गांव, शहर-शहर में जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। बच्चों के अधिकारों की रक्षा, अगर कोई बच्चा काम करता दिखे तो समाज के लोगों को उसे रोकने और संबंधित अधिकारियों को सूचित करने का नैतिक कर्तव्य निभाना चाहिए। स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी, कई एनजीओ बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कर शिक्षा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। समाज को ऐसे प्रयासों में सहयोग देना चाहिए। उदाहरण प्रस्तुत करना, समाज के शिक्षित लोग, मीडिया, शिक्षक और पंचायतें बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करें। बाल श्रम की समस्या से लड़ना केवल सरकार का काम नहीं है, बल्कि समाज के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर सरकार मजबूत नीति बनाए और समाज इसका ईमानदारी पूर्वक पालन करे तो हम अपने देश को बाल श्रम से मुक्त कर सकते हैं। हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा, सम्मानपूर्ण बचपन मिलना चाहिए। यही एक विकसित समाज की असली पहचान है। बाल श्रम एक सामाजिक कलंक है जिसे समाप्त करना हम सभी की जिम्मेदारी है। जब हर बच्चा स्कूल जाएगा और अपने सपनों को साकार कर पाएगा, तभी सच्चे अर्थों में देश का विकास संभव होगा। आइए हम मिलकर यह संकल्प लें कि किसी भी बच्चे का बचपन श्रम में नहीं, शिक्षा में बीते।
1: बाल श्रम सामाजिक अभिशाप और इसका समाधान, इस विषय पर अभी आप श्रोता श्री रितेश कुमार से उनकी वार्ता सुन रहे थे। और अब बारी है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म कश्मीर की कली का ये गीत सुनने का। गीत लिखा है SH बिहारी ने और संगीत दिया है OP नैयर ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: इस गीत के बाद आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: और अब हम बात करेंगे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के विषय पर। श्रोता मित्रों, जो ग्रामीण भारत के विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। भारत की आत्मा गांव में बसती है। यदि गांव विकसित होंगे तभी देश का समग्र विकास संभव हो पाएगा। गांव के विकास में बिजली की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिजली केवल घरों को रोशन नहीं करती बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग।

उद्योग और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करती है। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत की है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को मजबूत करना, सभी गांवों तक विद्युत पहुंचाना और किसानों तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग बिजली फीडर उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नए विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण, पुराने तारों तथा ट्रांसफार्मरों का उन्नयन और बिजली वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का कार्य किया गया। कृषि फीडर तथा घरेलू फीडर को अलग अलग करने से किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मिलने लगी और घरेलू उपभोक्ताओं को भी बेहतर तथा नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हुई। ग्राम ज्योति योजना का प्रभाव ग्रामीण जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब गांव के बच्चे शाम के समय भी पढ़ाई कर सकते हैं। स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक उपकरण बेहतर ढंग से संचालित हो रहे हैं। छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। बिजली की उपलब्धता ने डिजिटल सेवाओं और ऑनलाइन शिक्षा के लिए भी रास्ता खोला है। कृषि क्षेत्र में इस योजना के सकारात्मक बदलाव लाया है। किसानों को सिंचाई के लिए अधिक सुविधाजनक बिजली मिलने से उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि हुई है। आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग से भी इसमें बढ़ावा मिला है। हालांकि केवल बिजली पहुंचा देना ही पर्याप्त नहीं है, हमें बिजली के विवेकपूर्ण उपयोग भी करना होगा। ऊर्जा संरक्षण, LED बल्बों का प्रयोग, अनावश्यक बिजली की खपत में कमी लाना, ये सब हम सब की जिम्मेदारी है। श्रोताओं, ग्राम ज्योति योजना केवल बिजली उपलब्ध कराने की योजना नहीं, बल्कि ये ग्रामीण विकास तथा सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक प्रगति की एक मजबूत आधारशिला है। जब गांव रोशन होंगे तभी भारत का भविष्य और अधिक उज्ज्वल होगा। इन बातों के बाद अब आइए हम आप लोगों को एक प्यारा सा गीत सुनवाते हैं, जिसे हमने आपके लिए फिल्म शोर से लिया है। संतोष आनंद के इस गीत को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की।

इस गीत के साथ ही आज का कल कारखाने कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अगली मुलाकात तक के लिए संजय प्रसाद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: कार्यक्रम कल कारखाने अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने ही वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचारों का प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। विदेश राज्य मंत्री डॉ. कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। श्री सिंह ने बताया कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस संवाद मंच का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र ITI परिवर्तन के लिए गठित रणनीतिक परामर्श और सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सारथी देश के ITI तंत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए केंद्र, राज्यों, उद्योग जगत और प्रमुख संस्थानों को एक साथ लाने वाला सहयोगात्मक मंच है। भारत एआई मिशन ने आज वार्या नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि भारत एआई मिशन के अंतर्गत समर्थित मॉडलों में से एक का शुरू होना देश की एआई यात्रा में महत्वपूर्ण है। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said that the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Yatra. During the meeting, Mr. Shah directed for creating impregnable multi-layered security grid along the pilgrimage route with the coordinated efforts of the Central Armed Police Forces, Jammu and Kashmir Police and all security agencies. The minister emphasized to further strengthen the security framework with the extensive use of modern technologies such as drones, CCTV surveillance and advanced monitoring systems. External Affairs Ministry today summoned Charge d'Affaires of the United States, Jason Meeks, and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. This has already resulted in the tragic and avoidable loss of 3 Indian lives. The U.S. envoy was called in by Additional Secretary Americas in the Ministry of External Affairs in New Delhi

कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत के तहत अभी आप सुन रहे थे खरिया लोकगीत। कलाकार थे बुधराम खरिया और साथी। और अब मुझे यानी प्रवीण को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: संदेश के बाद हम हाजिर हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। श्रोताओं, आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:20 होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार।
4: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः।

श्रोता मित्रों, आज हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे बच्चों को श्रम के लिए नहीं बल्कि पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के संबंध में। जी हाँ श्रोता मित्रों, जैसा कि आप अपने आस पड़ोस इर्द गिर्द देखते होंगे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो श्रमिक के तौर पर कार्य करते रहते हैं, बल्कि उनका यह समय श्रम के लिए नहीं बल्कि पढ़ाई के लिए। जी हाँ, बचपन मेहनत करने, बोझ उठाने या मजदूरी करने के लिए नहीं बल्कि खेलने, सीखने और पढ़ने के लिए होता है। हर बच्चे को शिक्षा और एक सुरक्षित माहौल मिलना उनका मौलिक अधिकार है। बच्चों को श्रम से दूर रखने और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करना बहुत ज़रूरी है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना कानूनन अपराध है। शिक्षा बच्चों को गरीबी के चक्र से बाहर निकालती है और उनके लिए बेहतर भविष्य के दरवाजे खोलती है। यदि आप कहीं भी बाल श्रम होते देखें तो इसकी सूचना चाइल्ड लाइन यानी 1098 पर अवश्य दें। अगर आप बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में मदद करना चाहते हैं या किसी बच्चे को बाल श्रम से बाहर निकालने की प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी एनजीओ से संपर्क कर सकते हैं। अपने क्षेत्र में किसी एनजीओ या सहायता संस्था के बारे में आप पता कर, जो कि बच्चों के क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, आप उनसे संपर्क कर सारी जानकारियों को हासिल कर सकते हैं। हमने पहले भी कहा और फिर अपनी बातों को हम दोहरा रहे हैं कि बच्चों को श्रम के लिए नहीं बल्कि पढ़ाई के लिए आप सभी

ग्रामीण श्रोता मित्रों, हम आपको बता दें, जी राम जी से विकसित भारत को मजबूती मिलेगी। अब कैसे, चलिए जानते हैं। विकसित भारत जी राम जी योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था और श्रमिकों को सशक्त बनाकर विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार कर रही है। यह योजना देश में स्थायी और टिकाऊ निर्माण के जरिए गांवों के विकास और आजीविका को नई मजबूती दे रही है। यह अधिनियम मनरेगा की जगह लागू हुई है। ग्रामीण विकास की दिशा में कई परिवर्तनकारी और महत्वपूर्ण कदम इस योजना के तहत उठाए जा रहे हैं। ग्रामीण परिवारों को मिलने वाले 100 दिनों के रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। केवल मजदूरी के बजाय अब गांव में तालाब, सड़क, जल संरचनाएं और गोदाम जैसे स्थायी और उपयोगी निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। श्रमिकों को केवल मजदूर तक सीमित न रखकर उन्हें काम के साथ कौशल भी प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। मजदूरी का सीधा बैंक खातों में भुगतान, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और AI आधारित निगरानी से श्रमिकों के अधिकारों को पूरी सुरक्षा दी जा रही है।

श्रोता मित्रों, और अब बात मूंग के प्रयोग के संबंध में। जी हाँ, मूंग को हरी खाद के रूप में प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरता और जल धारण क्षमता बढ़ती है। फलियां, दाल तोड़ने के बाद बचे हुए पौधों को खेत में जोतने से प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन व पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे रासायनिक खादों पर निर्भरता कम होती है और अगली फसल की पैदावार में भारी वृद्धि होती है। दलहनी फसल होने के कारण मूंग की जड़ वायुमंडलीय नाइट्रोजन को खींचकर मिट्टी में स्थिर करती है। इससे जमीन में जैविक नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। हरी खाद मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को जोड़ती है, जो भूमि की भौतिक संरचना में सुधार करते हैं। यह मिट्टी में आयरन, जिंक और फास्फोरस जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों को प्राकृतिक रूप से बढ़ाती है। खेत में सड़े हुए पौधे एक स्पंज की तरह काम करते हैं, जिससे मिट्टी की नमी और पानी सोखने की क्षमता काफी बढ़ जाती है। तेजी से बढ़ने वाली मूंग की फसल खेत को अच्छी तरह ढक लेती है, जिससे अवांछित खरपतवार नहीं पनपते। मूंग की खाद के उपयोग से रासायनिक यूरिया पर होने वाला खर्च बचता है और भूमि लंबे समय तक उपजाऊ व स्वस्थ रहती है।

0: श्रोता मित्रों, और अब रुख करते हैं भेंटवार्ता की ओर। जी हां, बाह्य ध्वनि अंकन पर आधारित भेंटवार्ता का प्रथम प्रसारण अभी हम सुनेंगे। जी हां श्रोता मित्रों, आज का हमारा भेंटवार्ता का विषय है, अनूठी विशेषताओं से भरपूर है पुंगनूर गाय। जी हां, इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं श्री मोहित गुप्ता। तो चलिए सुनते हैं भेंटवार्ता का प्रथम प्रसारण। विषय है, अनूठी विशेषताओं से भरपूर है पुंगनूर गाय।
1: सर्वप्रथम आप अपना सूक्ष्म परिचय थोड़ा हमारे श्रोताओं को दीजिए।
2: मेरा नाम मोहित गुप्ता हुआ, यही गोलमुरी के निवासी हैं।
1: क्या करते हैं मोहित जी?
2: दवाई का हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटर है।
1: मोहित जी, ये बताइए कि जिस गाय की नस्ल को आपने पाला है, उस नस्ल को, उस प्रजाति को हम क्या कहते हैं और कैसे आपको जानकारी हुई?
2: ये हम लोग आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला से लेकर आए हैं। इनको नाड़ी पट्टी नैने बोलते हैं, जो नाड़ी पट्टी गौशाला में ही मिलता है। पी कृष्णम राजू जी द्वारा बनाया गया ये है।
1: तो आपको कैसे पता चला और फिर आप क्यों इच्छुक हुए इस प्रजाति को लेने के लिए?
2: ये हम लोग देखे थे, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे था, मोदी जी के पास भी था, योगी जी लेके आए थे, तो मन हुआ। फिर हम लोगों ने 3 साल लगातार इसके लिए गए, 2 बार हम लोगों ने खाली बाई रोड देख के आए कि कैसे क्या प्रोसेस है। फिर प्रोसेस में समय लगा 2 साल, 2 साल बाद हम लोग को मिला वहाँ से।
1: कहने का मतलब है कि गाय को लाने से पहले आपको इसके प्रक्रिया के विषय में जानकारी हासिल करनी पड़ी?
2: हाँ, जानकारी लेने के लिए हम लोग 2 बार गए थे, 2 बार हम लोग जानकारी लेके लौटे। उसके बाद पेपर वर्क हुआ, उनके बाद उनका सहयोग मिला, संपर्क हुआ, तब जा कर के यहाँ पे हम लोग ला पाए।
1: अच्छा, एक बात बताइए कि ये आप जो गाय के नस्ल को लेकर आए हैं, इस नस्ल को कहा क्या जाता है?
2: ये नाड़ी पट्टी नैनो है, मतलब नाड़ी पट्टी गौशाला की सबसे छोटी नस्ल है, जिसकी हाइट 1.5 फीट है। अभी पुंगनूर नस्ल से है ये।
1: अच्छा, एक बात बताइए कि अगर हम इन गायों के रहन सहन के संदर्भ में बात करें, तो किस तरह से इसका लालन पालन अभी आप कर रहे हैं और अभी ये कितने महीने के या कितने वर्ष की है?
2: जब हम ये लेके आए थे तो ये 10 महीने के थे, अभी ये 13 महीने के हो चुके हैं। अभी साइज इनका मात्रा 21 इंच है और रहन सहन इनका देखरेख ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्मल गाय से घर पे ही रखते हैं इनको, घर पे ही रहते हैं ज़्यादातर।
1: अच्छा, इसके लिए खटाल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं?
2: घर पे रूम है जो उसी पे रहते हैं, कोई खटाल वगैरह का जरूरत नहीं है इनको।
1: आपने साइज की बात बताई, जब आप लेकर आए तब ये कितने साइज की थी और अभी ये कितने साइज की है और आगे आयु के साथ साथ इनकी जो लंबाई चौड़ाई है वो बढ़ेगी क्या?
2: ये जब हम लेके आए थे 19 इंच की थी, अभी 21 इंच की है। इसका लास्ट हाइट जो है 24 से 25 इंच के बीच में लास्ट हाइट जो पेपर वर्क में भी है कि उतना ही जाएगा
1: जी। आयु की अगर हम बात करें तो उम्र कितने तक इनकी उम्र होती है?
2: ये अभी 14 महीने 13 महीने की उम्र इनके 20 साल होती है।
1: 20 साल?
2: हाँ, रख रखाव के ऊपर अच्छे से रखने से 20 साल ये रहते हैं आराम से।
1: अच्छा, हम रख रखाव की बात कर रहे हैं, तो रख रखाव में आपके घर पर ये किस तरह से आप इसे पाल रहे हैं?
2: घर में सभी लोग परिवार का सदस्य कई जैसे पालते हैं, ये भी घर में सभी को पहचानती है, एकदम आराम से रहती है, दिक्कत कुछ भी नहीं है, नॉर्मल बच्चे के जैसे खेलते रहती है।
1: नहीं, खटाल वगैरह जैसे अन्य पशुओं के लिए, मवेशियों के लिए खटाल वगैरह बनाना पड़ता है, इन गायों के लिए ऐसे कुछ व्यवस्था
2: नहीं? इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं, इनको घर पे ही रखते हैं, इनको कोई अलग से खटाल वगैरह का नहीं, घर पे ही रहते हैं। घर में ही साथ जहाँ हम लोग बेड रखते हैं वहाँ पे नीचे इनको बिछाते हैं, वहीं सोते हैं, पंखा में, एसी में, उनको कोई अलग से व्यवस्था के लिए जरूरत नहीं है।
1: अच्छा, एक बात बताइए कि खान पान की अगर हम बात करें, तो खान पान में क्या कुछ विशेष इनको खिलाया जा रहा है? जब आप लेकर आए थे तब क्या खिलाते थे और अभी वर्तमान समय में इनका खान पान में कुछ बदलाव हुआ है या फिर क्या खिला रहे हैं?
2: जब हम लेके आए थे तो ये काफ़ी डरी हुई थी, तो तब ज़्यादा नहीं खा रही थी, तो उनके डॉक्टर जी के द्वारा इनको दिया गया, अभी ये चना ही खाती है, चना, और सुबह दूध देते हैं इनको 3 लीटर, शाम में 3 लीटर दूध देते हैं रख रखाव के लिए बढ़िया से।
1: अच्छा, खान पान में हरी घास की बात करें, चारे के, सूखे चारे की बात करें, जैसे अन्य हमारे गाय मवेशी जो सूखा चारा खाते हैं या फिर हरी घास खाते हैं, तो इनके खान पान में वो शामिल होता है कि नहीं?
2: नहीं, ये हरी घास खाती है, लेकिन शहर में हरी घास कहाँ अब ज़्यादा मिल पाती है, और सूखा चारा ये नहीं खाती है। हरी घास खाती है लेकिन हरी घास बहुत कम मिलता है, अब हरी घास है ही कहाँ।
1: अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे आपने बताया कि इनकी आयु 20 वर्ष तक जाती है, ऐसे में दूध ये कब देने लगेंगी और दूध अगर देंगी तो ये कितना दूध देंगे?
2: ये 6 से 7 महीने में जब गाभिन होगी तो ये 1.5 लीटर तक रोजाना दूध देती है। इनके दूध ज़्यादा नहीं रहते हैं लेकिन दूध में इनका वसा ज़्यादा रहता है, 8% तक वसा रहता है।
1: अच्छा,
2: 1.5 लीटर तक ही दूध देती है।
1: डेढ़ लीटर तक ही दूध देंगे, उससे ज्यादा दूध
2: नहीं, ज्यादा दूध नहीं देती है।
1: अच्छा एक बात बताइए कि डेढ़ लीटर तक दूध और इनका जो आप जब लेकर आए वहाँ से आंध्र प्रदेश से, तो आपको लागत कितनी पड़ी?
2: लागत सर काफी पड़ गई, लागत हम पूरा अमाउंट नहीं बता पाएंगे, लेकिन लागत अच्छा खासा
1: मतलब पड़ी। लाखों लाख के
2: तीन साल का हम लोग का लगातार प्रयास से हुआ है।
1: हाँ तो आप जब इतने लाखों लाख रुपए खर्च किए हैं इन इन छोटे छोटे प्यारे जो पुंगनूर मवेशी को जो लेकर आप आए हैं, गायों के नस्ल को लेकर आए हैं, तो क्या सोच कर लाए हैं कि आप ऐसी शौक से लेकर आए हैं या फिर कुछ आमदनी, भविष्य में आमदनी के लिए लेकर आए, क्या कुछ विशेष?
2: देखिए आमदनी के लिए लोग बड़ी गायें जितने में हम लेकर आए उतने में बढ़िया चार गिर गायें आ जाएंगी, तो आमदनी तो मकसद है ही नहीं, बस सनातन को बढ़ावा देना है कि घर जैसे जैसे बड़े छोटे होते जा रहे हैं तो जानवर के हाइट छोटी है तो उसको घर में रखने में आसानी रहता है, तो आराम से उसको आदमी रख सकता है। पहले जानवर आदमी का घर बड़ा होते थे तो आदमी आराम से गाय रखते थे, जगह के कमी के कारण आदमी गाय नहीं रख पा रहे हैं तो ये रख सकते हैं। जैसे जैसे इनका भविष्य में प्रजनन होगा हम लोग जमशेदपुर में इनको ऐसे ही दे देंगे, कोई आमदनी का कोई महत्व है ही नहीं।
1: नहीं मुख्य मकसद है कि जिस तरह से अभी जो गायों को पालने से दूर हो रहे हैं लोग, वंचित हो रहे हैं, तो ऐसे में लोग अपने अपने घरों पर मतलब इस छोटे पशु को पाल सकते हैं जो कि पुंगनूर नस्ल की है, ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानियों का सामना भी ना करना पड़े। अच्छा अगर हम रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें, अगर बीमारियों की बात करें, तो क्या कुछ विशेष रोग प्रतिरोधक क्षमता इनमें होती है या फिर इनमें किस तरह के बीमारी देखने को मिलता है या फिर क्या कुछ विशेष परेशानी अब तक आपको देखने सुनने को मिली?
2: ये रोग प्रतिरोधक क्षमता इसका बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, ये नॉर्मल पूरा इंडियन ब्रीड ही है, मतलब इंडियन का ही है। इसमें ये जिस माहौल में जाएगी समय लगता है लेकिन ढल जाती है। परेशानी इसमें शुरू में यही है कि काफ़ी ज़्यादा लोग आए तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के आने से, संपर्क में आने से ये डर जाती थी, नहीं खाना खाती थी, तो बस वही सब परेशानी है, बाकी अब कोई परेशानी नहीं है, सबके साथ घुल मिल गई है
1: सब। अच्छा अन्य मवेशियों की अगर हम बात करें, अन्य मवेशियों की तुलना में ये जो आप पाल रहे हैं तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि अन्य मवेशियों को पालने में कहीं आपको ऐसा लग रहा हो कि जैसे आपने बताया डेढ़ लीटर ही दूध ये देगी, और वो भी डेढ़ लीटर दूध शायद आप इस्तेमाल ना कर पाए।
2: डेढ़ दूध तो इनका हम लोग इस्तेमाल शायद ही ना कर पाए, क्योंकि दूध तो इनका जो बच्चे के लिए ही उपयुक्त होता है, हम लोग उसमें कोई दूध नहीं है, बस ये रखने से खुशी है। जब भी हम लोग काम से घर आते हैं, थक के आते हैं, आसपास के लोगों का भी माहौल बना रहता है, देख के सब खुश रहते हैं।
1: अच्छा अभी जैसे आप यहाँ लाकर रखे हैं, आंध्र प्रदेश से लेकर आए हैं, वहाँ का मौसम और यहाँ का मौसम इनके लिए अनुकूल रहा है कि नहीं, अनुकूल है कि नहीं?
2: मौसम ये एडजस्ट कर लेती हैं, समय लगता है लेकिन मौसम ये एडजस्ट कर लेती हैं। लगभग आंध्र प्रदेश में गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो इस बार यहाँ भी गर्मी ज़्यादा ही पड़ी है, तो इनको ढलने में इनको पूरा सहायक मिला है, सहायता मिली इनको ढलने में।
1: अच्छा जब आप वहाँ से लेकर आएँ, चिकित्सकों से आपने परामर्श ली होगी कि क्या कुछ इन्हें भविष्य में ऐसे रोग इनके साथ इन कुछ चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे में आप सावधानियाँ क्या बरत रहे हैं?
2: ये जब लेके आए थे तो इनके लिए बहुत ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे एक डॉक्टर चंद्रा जी हैं, उनका सपोर्ट, उनका देखरेख समझिए,
1: मतलब पशु चिकित्सक की देखरेख में।
2: हाँ डॉक्टर चंद्रा सर के देखरेख में एकदम अभी ठीक हैं।
1: खान पान एक बार हमारे श्रोताओं को पुनः खान पान के विषय में बता दे कि क्या कुछ, क्योंकि हमारे जो श्रोता मित्र इस समय सुन रहे हैं, अगर वो भी इच्छुक होंगे इस पुंगनूर नस्ल की गाय को पालने के लिए, तो वो कितना खर्च आएगा, ज़्यादा खर्च तो नहीं, तो क्या कुछ ऐसा?
2: ये खर्च इसमें कुछ भी नहीं है, आप जैसे हिसाब से रखिए एकदम नॉर्मल से नॉर्मल खर्च में भी रह सकती हैं। बस चना इनको देते हैं और दूध देते हैं, वो भी इनके सेहत के हिसाब से दिया जाता है, कोई ज़रूरी नहीं, नॉर्मल घर के खाने में भी ये रह सकती है आराम से।
1: अच्छा परिवार के सदस्यों की तरफ, सारे परिवार के सदस्यों के साथ घुल मिल गई है?
2: सारे परिवार के सदस्यों के साथ घुल मिल गई है, एक का नाम गौरी, एक का नाम गोपाल है, अभी आप इनको बुलाएंगे दूर से आ जाएंगे, नाम सुन के आएंगे। अच्छा। जिनको बुलाएंगे वही आएंगी।
1: आपके आस पड़ोस की बात करें तो जब आप लेकर आए हैं, पूरे शहर की अगर हम जमशेदपुर शहर की बात करें तो ये मात्र आपके पास ही हैं, ऐसे में लोग जो आते हैं मिलते हैं या फिर जो मवेशी पालक जो पशुपालक आते हैं तो उनका क्या भाव रहता है?
2: ये इस तरह का नस्ल झारखंड में ही पहला बार है, क्योंकि जहाँ से हम लोग लेके आए नाड़ी पट्टी गौशाला, वहाँ पेपर वर्क जब पास होता है तो झारखंड में अभी तक इस साइड की गायें कभी कोई नहीं लेके आया। जो जैसे भी लोग आते हैं वो देख के बहुत अचंभित होते हैं, उनको खुशी भी होता है कि इस तरीका का हमारे शहर में भी आया है, और इनका विकास दर अगर तेज़ी से बढ़े तो हम लोग उनको भी और सब कोई को देने में सहायक होंगे। हम लोग सोचे हैं कोई इनसे एक रुपया का भी आज तक ना किसी से डोनेशन लिया, ना ही इनका आगे इनका द्वारा कुछ एक रुपया का भी वो किया जाएगा, हाँ जो रख सकते हैं, जो इच्छुक हैं, जो हम लोग उनको लगेगा तो हम लोग उनको ऐसे ही दे देंगे, क्योंकि ज़्यादा हम लोग संख्या रख के भी क्या ही करेंगे, तो ऐसे ही हम लोग।
1: जो मवेशी, इस तरह के मवेशी को पालने को इच्छुक है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: उन्हें यही संदेश देना चाहेंगे कि आप भी लेके आएँ, घर में आपके लिए अलग से रहेगा। लोग आज कुत्ते पाल रहे, घर में आज आप गायें पालिए, आपको अलग खुशी होगा। जिन और लास्ट में ये बोलेंगे, जिनको भी ये अगर लेना हो या फिर जिनको भी किसी भी तरीका का जानकारी चाहिए हो, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ हम अपने द्वारा अपने साथ ले जा करके उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं।
1: जिन्हें गाय पालने की इच्छा है, और वैसे पशुपालक भाई जो अभी आपको सुन रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि अगर वो इच्छुक हैं और उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा खर्च है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो भी यहाँ ला सकते हैं। मौसम भी इनके अनुकूल है, और खान पान के संदर्भ में भी आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की है। मोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ठीक, धन्यवाद।
0: श्रोता मित्रों, अभी आप सुन रहे थे बाह्य ध्वनि अंकन पर आधारित भेंटवार्ता का प्रथम प्रसारण। विषय था, अनूठी विशेषताओं से भरपूर है पुंगनूर गाय। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे थे श्री मोहित गुप्ता।

ग्रामीण श्रोता मित्रों, और एक नज़र डालते हैं मौसम संबंधी सुझाव पर। जी हाँ, वर्तमान मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों, धान की नर्सरी तैयार करने की सलाह दी जा रही है। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई करने के लिए लगभग 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में पौधे तैयार करना पर्याप्त होता है। नर्सरी के क्षेत्र को 1.25 से 1.5 मीटर चौड़ी तथा सुविधानुसार लंबी क्यारियों में बांटे। पौधशाला में बुआई से पूर्व बीजोपचार के लिए 5.0 किलोग्राम बीज के लिए पेवेस्टिन 10 से 12 ग्राम और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 10 लीटर पानी में घोल ले। आवश्यकता अनुसार इस घोल को बनाकर इसमें 12 से 15 घंटे के लिए बीजों को डाल दे। उसके बाद बीज को बाहर निकालकर किसी छायादार स्थान में 24 से 36 घंटे के लिए ढककर रखे और पानी का हल्का हल्का छिड़काव करते रहे। बीज में अंकुर निकलने के बाद पौधशाला में छिड़क दे। अरहर की बुआई इस सप्ताह कर सकते हैं। अच्छे अंकुरण के लिए बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का ध्यान रखें। बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। अच्छे अंकुरण के लिए खेत में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है। किसान भाई बहनों, यह आग्रह किया जा रहा है कि बीजों को बोने से पहले अरहर के लिए उपयुक्त राइजोबियम तथा फॉस्फोरस को घुलनशील बनाने वाले जीवाणुओं फफूंद के टीकों से उपचार कर लें। इस उपचार से फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है। मूंग एवं उड़द की फसल की बुआई के लिए किसान भाई बहनों उन्नत बीजों की बुआई करें। अच्छे अंकुरण के लिए बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का ध्यान अवश्य रखें। बुआई से पूर्व बीजों को फसल विशेष राइजोबियम तथा फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया से अवश्य उपचारित करें। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना अत्यंत आवश्यक है। यह समय अगेती, फूलगोभी, टमाटर, हरी मिर्च और बैंगन की पौधशाला बनाने के लिए उपयुक्त है। किसान भाई बहनों, यह प्रयास करें कि कीट अवरोधी नायलोन की जाली का प्रयोग अवश्य किया जाए ताकि रोग फैलाने वाले कीटों से फसल को बचाया जा सके। पौधशाला को तेज धूप से बचाने के लिए 40% छायादार नेट द्वारा 6.5 फीट की ऊंचाई तक ढक सकते हैं। बीजों को थीराम 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपचार के बाद पौधशाला में बुआई करें। भिंडी की फसल में तुड़ाई के बाद यूरिया 5 से 10 किलो प्रति एकड़ की दर से डालें तथा उसके उपरांत सिंचाई करें। साथ ही तापमान को ध्यान में रखते हुए माइट, जैसिड और होपर की निरंतर निगरानी करते रहे। तापमान को देखते हुए किसान भाई बहनों, तैयार सब्जियों की तुड़ाई सुबह या शाम को करें। इसके बाद इसे छायादार स्थान में रख दें। इस मौसम में किसान भाई बहनों अपनी मिट्टी की जांच किसी प्रमाणित स्रोत से करवाकर उचित पोषक तत्व भूमि में मिलाएं और जहां संभव हो अपने खेत को समतल करवा लें। फलों के नए बाग लगाने वाले गड्ढों की खुदाई कर उनको खुला छोड़ दें ताकि हानिकारक कीटों, रोगाणु तथा खरपतवार के बीज आदि नष्ट हो जाएं।

कार्यक्रम कृषि जगत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:55 हो चुके हैं। अगली प्रस्तुति होगी आकाशवाणी रांची से, जहां से आप सुनेंगे ठीक शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ओमेगी स्मार्ट आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा।

0: एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
1: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
0: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर लगाई रोक। जरूरत के पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति थोक बिक्री केंद्रों से होगी। रांची में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। रबी फसलों के मूल्य निर्धारण पर ली गई राय। झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए रांची में तैयारियां पूरी। 14 जून को 5 केंद्रों पर होगी परीक्षा। झारखंड में पहुंचा मॉनसून। मौसम विभाग ने जलवायु परिवर्तन के कारण इस वर्ष जताई सामान्य से कम बारिश होने की संभावना। और झारखंड T20 लीग में कोयलांचल सुपर किंग्स ने शानदार जीत हासिल की। छोटा नागपुर रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। रांची में आज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP ने पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ रबी फसलों के मूल्य निर्धारण को लेकर बैठक की। CACP के अध्यक्ष ए गणेश कुमार ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं झारखंड के कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि केंद्र सरकार से झारखंड के किसानों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखने का अनुरोध किया गया है।
1: झारखंड सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है हमारा किसान का समस्या चैलेंजेस उसके सामने रखना, और भारत सरकार बीइंग और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा जो गार्डियन के रूप में उनसे रिक्वेस्ट करना।

0: किसानों के हित में बिना पॉलिसी एमएसपी में निर्धारण किया जाए, ये प्रयास हमने जरूर किया है।
1: झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 के लिए रांची जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अपर जिला दंडाधिकारी धनंजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में परीक्षा के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। यह परीक्षा 14 जून को रांची के 5 केंद्रों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मेदिनीनगर नगर निगम की 93 लाख रुपए की एक सड़क योजना को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शांति और सुरक्षा का माहौल स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का महिमामंडन नहीं होना चाहिए।
2: नगर निगम के द्वारा एक योजना की स्वीकृति दी गई और योजना का नाम रखा गया डब्लू सिंह के घर से मेडिकल कॉलेज तक सड़क का निर्माण। मेरी आपत्ति इस मायने में है कि एक ऐसा व्यक्तित्व या एक ऐसा चरित्र जिसके विरुद्ध विभिन्न प्रकार के आरोप लगे हो, उसका नाम योजना से जोड़ा जाए, यह कदापि उचित नहीं हो सकता।
1: अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए छात्रवृत्ति भुगतान दिसंबर से पहले सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया। मंत्री ने साइकिल वितरण योजना में तेजी लाने तथा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को नए स्वरूप में अधिक प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिए। रांची में उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की बैठक में जनगणना कार्य, मतदाता मैपिंग और विभिन्न प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने 13 और 14 जून को मतदाता मैपिंग के लिए आयोजित विशेष शिविरों के व्यापक प्रचार प्रसार तथा सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ की सक्रिय उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के तहत कल रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट ऑडिटोरियम रांची में यंग प्रोफेशनल्स राउंड टेबल का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का विषय आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड रखा गया है। माय भारत रांची द्वारा सहयोगी संस्था प्रोजेक्ट पॉइंट ओडिशा के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में युवा पेशेवर विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जामताड़ा जिले के किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने बताया कि किसान सम्मान निधि से किसानों की कृषि लागत कम हुई है और उन्हें समय पर खेती करने में सहायता मिल रही है।
3: पीएम किसान सम्मान निधि है जो जिले में किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। अभी खरीफ में आप देखिए तो उनको खाद बीज इनपुट खरीदने के लिए उससे बहुत मदद मिलती है। राज्य सरकार की भी योजना में आप देखिए मिलेट मिशन है, इसके अलावा बीज उत्पादन में भी सब्सिडी दी जा रही है। उसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज से 100% सब्सिडी पे बीज भी अभी दिए जाने हैं। उनकी आय दुगुनी से भी ज्यादा हो इसके लिए जिला कृषि कार्यालय प्रयत्नशील है।
1: गुमला नगर भवन में आज पंचायत उपबंध झारखंड नियमावली 2025 पर एक दिवसीय जिला स्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने कहा कि पेसा नियमावली पूरी तरह लागू हो चुकी है और इसका उद्देश्य परंपरागत ग्राम सभा तथा पंचायती राज स्वशासन व्यवस्था को मजबूत बनाना है। उन्होंने रिक्त पारंपरिक ग्राम प्रधान पदों को स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार शीघ्र भरने का निर्देश दिया। हजारीबाग में आयोजित आम उत्सव में महिला किसानों और आम उत्पादकों का उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले के उपायुक्त हेमंत सत्ती ने कहा कि मनरेगा और बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से किसान आम बागवानी अपनाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
4: प्रोडक्शन तो है, लेकिन जो उसकी वास्तविक कीमत है वो किसानों को नहीं मिल पाती। उनकी बेहतर कीमत दिलाने के लिए विकास आयुक्त द्वारा ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया, जिसमें एक ओर व्यापारी वर्ग है, दूसरी ओर उत्पादक गण है। सामंजस्य को बनाने के लिए उसके लिए मेले का आयोजन किया गया है।
1: और अब मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून ने आज झारखंड में प्रवेश कर लिया है और जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज समेत धनबाद, गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम के कुछ हिस्सों को कवर कर लिया है। मौसम विज्ञान विभाग रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मानसून की उत्तरी सीमा वर्तमान में धनबाद होते हुए आगे बढ़ रही है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान झारखंड के और अधिक क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है।
5: मॉनसून का आगमन एक सुखद समाचार इसमें लेके आया है। झारखंड में 12 जून को मॉनसून पहुंचता है और मध्य भाग रांची समेत में 15 तारीख को मॉनसून पहुंचता है। पूर्वी भाग है वहां पे 12 जून को अपने सही समय में पहुंचा है और अगले 2-3 दिनों में इसका विस्तार झारखंड के अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग को देखने को मिलेगा।
1: झारखंड T20 लीग में कोयलांचल सुपर किंग्स ने रोमांचक मुकाबले में छोटा नागपुर रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। 191 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोयलांचल सुपर किंग्स ने 19.1 ओवर में 5 विकेट खोकर जीत दर्ज की। कप्तान उत्कर्ष सिंह ने गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर लगाई रोक। जरूरत के पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति थोक विक्री केंद्रों से होगी। रांची में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। रबी फसलों के मूल्य निर्धारण पर ली गई राय। झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए रांची में तैयारियां पूरी। 14 जून को 5 केंद्रों पर होगी परीक्षा। झारखंड में पहुंचा मॉनसून। मौसम विभाग ने जलवायु परिवर्तन के कारण इस वर्ष जताई सामान्य से कम बारिश होने की संभावना। और झारखंड T20 लीग में कोयलांचल सुपर किंग्स की शानदार जीत। छोटा नागपुर रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
7: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
8: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे गढ़वा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता।
1: गढ़वा जिले में आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। जिला मुख्यालय में पतंजलि योग समिति सहित कई सरकारी संस्थानों में भी योग शिविर आयोजित कर लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। शहर के बिगन देवी स्मृति भवन में पतंजलि योग समिति द्वारा संचालित नियमित योग शिविर का संचालन कर रहे प्रशिक्षक उपकार गुप्ता से हमने योग के विषय में जानना चाहा, तो उन्होंने योग के लाभ के विषय में जानकारी दी।
2: मैं रामदेव बाबा के यहाँ से ट्रेनिंग लेकर यहाँ शुरू किया हूँ और यहाँ से योग करके बहुत सारे भाई बहन बहुत फायदा उठा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग का स्थान पूरे विश्व में जन जन को जागृत किया है। इससे हमारे कक्षा के लोग को भी बहुत सारा फायदा हुआ है। बहुत लोग को बहुत सारी असाध्य बीमारियां थी, वो सब ठीक हो रहा है। मैं गढ़वा वासियों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि योग में जुड़िए और प्रतिदिन योग कीजिए।
1: इसी तरह जिला मुख्यालय स्थित बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क में भी नियमित योग शिविर का संचालन किया जा रहा है। इस योग शिविर में अनेकों युवा पुरुष और महिलाओं को भाग लेते देखा गया। हमने यहाँ नियमित योग शिविर में भाग ले रहे एक युवा धीरज कुमार से बातचीत की, तो उन्होंने बताया,
3: जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री योग करके निरोग रहने का अपील किया है, तब से हम बिरसा मुंडा पार्क में आकर प्रतिदिन योग करता हूँ। हम पहले हॉस्पिटल का चक्कर लगाया करते थे, लेकिन अब हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ता है। योग करने से मैंने 3 वर्षों में 10 किलो वजन कम किए हैं। योग करने से तन और मन दोनों स्वस्थ रहता है।
1: जिले में पिछले दिनों दिशा की बैठक सांसद विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में गढ़वा जिले में चल रही विशेष रूप से सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं की गंभीरता से समीक्षा की गई। वहीं कई ज्वलंत समस्याओं पर भी चर्चा कर उनके समाधान के लिए पहल करने का संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया। बैठक के बाद इसकी जानकारी देते हुए सांसद विष्णु दयाल राम ने बताया,
4: आज मुख्यतः पिछले मीटिंग में जो प्रश्न उठाए गए थे या जो जिज्ञासा प्रकट की गई थी, उन प्रश्नों के उत्तर की समीक्षा की गई और माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र में हो रही योजनाओं की प्रगति की भी चर्चा की। जिन विभागों के प्रगति प्रतिवेदन में कमी पाई गई, उन कमियों की ओर उन विभागों का ध्यान आकर्षित कराया गया। कमेटियां भी बनाई गई है ताकि जांच प्रतिवेदन प्राप्त करके यदि कोई पदाधिकारी दोषी है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके, ताकि भविष्य में उन कमियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर किया जा सके। किसानों को धान का पैसा अभी भी नहीं मिला है, उन किसानों को धान का पैसा का भुगतान शीघ्र कराया जाए। जो सड़कें बनाई जा रही हैं, उन सड़कों की गुणवत्ता यदि सुनिश्चित नहीं की गई है तो उसके लिए दोषी पदाधिकारियों की कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई। अस्पताल की व्यवस्था के बारे में भी चर्चा की गई। यह सरकार के द्वारा प्रदत्त एम्बुलेंस के माध्यम से या जनप्रतिनिधियों के द्वारा दी गई माध्यम से उनको एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
1: गढ़वा जिले में इस समय लोगों को कड़ी धूप का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि बीच बीच में हुई बूंदाबांदी और तेज हवाओं के कारण तापमान गिरकर 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ चुका है, लेकिन लगातार कड़ी धूप से लोग काफी परेशानी महसूस कर रहे हैं। लोग बेसब्री से मानसून के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा।
0: अभी आप सुन रहे थे गढ़वा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: आप सुन रहे थे जिले में आज
1: जी से, अभी आप सुन रहे थे जिले में आज कल। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:16 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं बांग्ला कार्यक्रम।

बांग्ला कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 7:45 हुआ चाहते हैं और अब प्रस्तुत है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पत्रिका कल्याणी।

0: स्वास्थ्य पत्रिका कल्याणी में सभी दोस्तों को रेडियो दोस्त जयश्री का प्यार भरा नमस्कार जोहार। गर्भावस्था किसी भी स्त्री के लिए बेहद ही रोमांचक अनुभव के जैसा होता है और इसमें बहुत सारे उथल पुथल चलता रहता है हमारे दिमाग में। गर्भावस्था के दौरान अक्सर सारा ध्यान हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, खान पान और जांचों पर ही रहता है, जबकि मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर दिया जाता है। गर्भावस्था में शरीर के भीतर हो रहे तीव्र हार्मोनल बदलावों के कारण मूड स्विंग, चिंता और तनाव होना बहुत ही सामान्य है, लेकिन इसे संभालना उतना ही जरूरी है। दोस्तों, गर्भावस्था में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कुछ जरूरी बातें जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा। किसी दिन आप बहुत खुश महसूस कर सकती हैं, तो किसी दिन बिना वजह उदासी या फिर चिड़चिड़ापन हो सकता है। अपने लिए दयालु बनिए और हर काम को एकदम परफेक्ट तरीके से करने का दबाव खुद पर मत बनाइए। अपने मन की बात, डर या चिंताओं को छुपाकर मत रखिए। अपने जीवन साथी, परिवार के सदस्यों या किसी भरोसेमंद दोस्त से इस बारे में खुलकर बात करें। कई बार सिर्फ अपनी बात कह देने से ही मन का बोझ बहुत कम हो जाता है। दोस्तों, डॉक्टर की सलाह के अनुसार हल्की वॉक यानी कि टहलना, प्राणायाम या गर्भावस्था के लिए सुरक्षित योग भी कीजिए। शारीरिक गतिविधि से क्या होता है ना दोस्तों, शरीर में एंडोर्फिन यानी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो मूड को बेहतर बनाते हैं। रोज 10 से 15 मिनट का ध्यान या गहरी सांस लेने का अभ्यास मन को शांत रखने में मदद करता है। और हाँ, इंटरनेट, सोशल मीडिया या फिर कहीं पर भी गर्भावस्था से जुड़ी हर नकारात्मक कहानी या अधूरी मेडिकल जानकारी को पढ़कर परेशान मत होइए। किसी भी तरह का सवाल हो या किसी भी तरह की शंका हो तो सीधे अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात कीजिए। मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारी नींद और डाइट से है। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेने की कोशिश कीजिए। पौष्टिक और संतुलित आहार लीजिए, क्योंकि पोषक तत्वों की कमी भी कभी कभी मूड और एनर्जी के स्तर को प्रभावित कर सकती है। अगर उदासी, बहुत अधिक घबराहट, रोने का मन होना या किसी काम में मन न लगना जैसी स्थितियां लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा बनी रहे तो इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज ना करें। ऐसे स्थिति में किसी प्रोफेशनल काउंसलर या थेरेपिस्ट की मदद लेने में हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए एक बेहतरीन कदम होता है। तो गर्भावस्था में मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। और जब बात हम बच्चे की कर रहे हैं तो बच्चों में योगासन भी आज की तारीख में बहुत जरूरी है। तो आइए नवजात शिशु और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मिथिलेश कुमार से जानते हैं बच्चों के लिए योग का महत्व विषय पर कुछ बातें। स्वास्थ्य पत्रिका कल्याणी में दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारी महिला दोस्तों के सबसे बड़ी उलझन और सबसे बड़ी चिंता का जो विषय होता है वो बच्चे होते हैं। तो बच्चों में आजकल विभिन्न प्रकार की परेशानियां देखी जा रही हैं, खासकर उनका पोस्चर, उनका जीवन शैली और उनका जो क्रियाकलाप है वो कहीं ना कहीं उन्हें बीमार बना रहा है, मोटा बना रहा है, अस्वस्थ बना रहा है। ऐसे में योग दिवस के मद्देनजर हम आज बात करेंगे बच्चों के लिए योग का महत्व विषय पर। और आज हमारे साथ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मिथिलेश कुमार जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर मिथिलेश कुमार जी, आपका हमारे कार्यक्रम कल्याणी में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खास करके बच्चों के लिए। बच्चों में योग का योगदान बहुत ही आवश्यक।
0: डॉक्टर साहब, आजकल डिजिटल दुनिया है और हमारी जीवन शैली में भी बहुत कुछ बदलाव आ चुका है, तो ऐसे में बच्चों के लिए योग का क्या महत्व है? किस तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, शारीरिक विकास को बेहतर करने में और उनको मोटापा से दूर रखने में
1: बच्चों के जीवन में योग के प्रमुख महत्व और लाभों को कुछ बिंदुओं पर हम लोग समझेंगे। पहला बिंदु है शारीरिक लाभ, फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक लाभ मिलने से बच्चे का मांसपेशी लचीला होता है, बोन स्ट्रांग होगा उसका, हड्डियों का सही विकास होता है। बेहतर मुद्रा अगर योग से सीखा जा सकता है, बच्चे आजकल डेस्क पे, बेड पे सो के पढ़ते हैं जिससे उनको पोस्चरल प्रॉब्लम होता है, पीठ में दर्द, पैर हाथ में दर्द, इससे योग को भली भांति ठीक किया जा सकता है। दूसरा है बिंदु मानसिक डेवलपमेंट, मानसिक और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें योग से बच्चे का एकाग्रता में वृद्धि होती है, प्राणायाम और ध्यान से बच्चों का दिमाग शांत रहता है, जिसमें उनकी निर्णय लेने की क्षमता और ध्यान केंद्र करने की क्षमता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है योग। तनाव से मुक्ति मिलती है योग से। आज के समय में बच्चों को पढ़ाई भी और गतिविधियों का तनाव होता है, योग इस तनाव और चिंता को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। तीसरी बात है भावनात्मक और सामाजिक विकास, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट बाई योग, बेनिफिट भी बोल सकते हैं। बच्चों में योग से आत्मविश्वास का निर्माण होता है। जब बच्चे नए आसन सीखते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। भावनाओं पर नियंत्रण सिखाता है योग। योग बच्चों को धैर्य रखना और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सिखाता है, जिससे उनमें चिड़चिड़ापन कम होना, दिमाग में कंसंट्रेशन बढ़ना इत्यादि बढ़ाता है योग।
0: तो अभी जैसा हमारा डिजिटल युग चल रहा है, बच्चे मोबाइल में ज्यादा रह रहे हैं, सुस्ती उनमें आ रही है और जो आगे की तरफ झुके हुए हो रहे हैं, कुछ बच्चे ये मोटे हो रहे हैं तो ज्यादा ही मोटे हैं, पतले हैं तो बिल्कुल ही पतले हैं, आजकल मोटापा ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, और साथ ही आजकल बच्चों में चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, जैसा कि आपने कहा कि योग से फायदा तो है लेकिन किस तरह से करें, और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी है, हमेशा उनको अटेंशन चाहिए होता है, हर चीज में अटेंशन चाहिए होता है, तो इस तरह की चीजों को क्या योग के जरिए दूर किया जा सकता है और वो कैसे किया जा सकता है?
1: बिल्कुल, ये सब जो अटेंशन डेफिसिट इवन की बहुत केस में हम लोग ऑटिज्म चाइल्ड देखते हैं, अगर योग ढंग से करवाया जाए, प्राणायाम कराया जाए, फिजिकल एक्टिविटी कराया जाए, तो ये बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। बच्चे को प्रेरित करने के लिए पहले पेरेंट्स को खुद अपना योगा का एक चटाई बिछा के सुबह में बैठना होगा, बच्चे को दिखाना होगा अपना एक्टिविटी, बच्चे खुद प्रेरित होंगे।
0: सुबह के समय तो हर कोई आपाधापी में रहता है, बच्चे को भी सुबह जल्दी स्कूल जाना होता है, अभिभावकों को भी काम पर जाना होता है, वैसे में सुबह का समय थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो शाम को या फिर किसी और वक्त भी तो इसको किया जा सकता है?
1: बिल्कुल, कोई भी समय ले सकते, फ्री होना चाहिए। आप घर में एक शांत जगह में अपना कारपेट या मैट बिछा लें, बच्चे के साथ शुरू में आप बैठे, आप उसको आदत डालें, धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा आदत उनका। कम से कम आधा घंटा 40 मिनट बच्चे को योगा डेली करवाएं, उसमें एरोबिक एनएरोबिक दोनों प्राणायाम वगैरह सिखाएं, जिससे सब कुछ नॉर्मल होने का चांसेस है।
0: तो किस किस तरह के योग बच्चों को करना चाहिए और योगासन के समय ध्यान देने योग्य कौन सी बातें हैं, बच्चों को बेहतर योगासन सिखाकर उनके शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास को बेहतर किया जा सके?
1: बिल्कुल, जैसे एरोबिक एक्सरसाइज में आप उसको आंख बंद करके वर्ड उच्चारण करना सिखा सकते हैं, पर्टिकुलर कुछ पॉइंट पर देख करके, अनुलोम विलोम, कपाल भाती एरोबिक एक्सरसाइज।

0: बहुत फायदेमंद है बच्चों के लिए। शारीरिक के लिए जैसे सूर्य नमस्कार एक आसन है, अगर उसको 12 स्टेप सिखाया जाए तो इसमें शरीर का पूरा मसल एक्टिविटी सब इन्वॉल्व हो जाता है। सूर्य नमस्कार जरूर सिखाएं बच्चे।
1: और हर दिन 12 बार अगर सूर्य नमस्कार करते हैं तो वो शरीर को बेहतर पोस्चर में भी लाता है और बेहतर बनाने का भी काम करता है।
0: बिल्कुल, अभिभावक पहले खुद बच्चे के साथ करें, धीरे धीरे बच्चा खुद सीख जाएगा और उनको कम से कम 1 घंटा के अंदर ये सिखाएं डेली। सूर्य नमस्कार बहुत जरूरी है, साथ कर अनुलोम विलोम कपाल भाती एरोबिक एक्सरसाइज कंसंट्रेशन बनाने में बहुत उपयोगी हो।
1: और उसके बाद हलासन है, नौकासन है, चक्रासन है, धीरे धीरे करके बच्चों को सिखाकर शीर्षासन है जिससे कि मानसिक विकास बच्चों का बेहतर होता है। तो इस तरह कुछ आसन, भुजंगासन है, तो ये सारे आसन करा के हम बच्चों को बेहतर शारीरिक लोच ला सकते हैं उनमें, और साथ ही कहें तो डिजिटल सुस्ती से एक मानसिक सक्रियता की ओर ले जा सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बोले आपने, ये सब जो आसन का नाम गिनाया गया इसको अगर आप कहीं से भी ले सकते हैं उसी अनुसार कीजिए, बच्चा का लिए हेल्थ और मेंटल हेल्थ हमेशा ठीक रहेगा।
1: तो वीडियो वगैरह भी देख करके यूट्यूब पर भी आजकल यह सब मौजूद है, तो अगर हम बेहतर तरीके से या किसी बेहतर योग प्रशिक्षक से भी हम अगर कुछ दिन प्रशिक्षण ले लें तो सीख सकते हैं बच्चे, और इस तरह से बच्चों में बेहतर जो है विकास हो सकता है।
0: अभी बहुत यूट्यूब में ऑनलाइन आसन चलता है, पेरेंट्स खुद करें और बच्चों को साथ में बैठाएं, ऑनलाइन योगासन बहुत सारा है, यूट्यूब में मिल जाएगा।
1: तो बच्चों के लिए योग के महत्व विषय पर आज बात करते हुए एक डॉक्टर होने के नाते आप हमारे अभिभावकों को और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: कम से कम वीक में 5 से 6 दिन 1 घंटा के लिए बच्चे को योग सिखाएं, गार्जियन खुद बैठे शांत वातावरण में, बच्चा का जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी खुद कम हो जाएगा, मोबाइल देखने का आदत कम हो जाएगा अगर योग ठीक से कराएंगे तो, बहुत बेनिफिशियल है योग।
1: और खाने पीने में क्या ध्यान रखना चाहिए बच्चों को?
0: हम लोग तो डॉक्टर हैं, पेटिशन हमेशा बोलते हैं होममेड फूड, घर का बना खाना दीजिए, कभी बाजार का पैक फूड मत दीजिए। घर का खाना गर्मी के दिन में लिक्विड डाइट, डाब का पानी, सादा पानी, अगर बहुत बच्चा कमजोर है तो ORS गोल्ड, सीजनल फ्रूट्स, जिस सीजन में अभी गर्मी में आम है, लीची है, बहुत सारा फ्रूट्स आ रहा है, इस पर जरूर ध्यान दें, खास करके गर्मी के मौसम।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं को बच्चों के लिए योग का महत्व विषय पर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर मिथिलेश कुमार जी।
0: थैंक यू मैडम।
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे बच्चों के लिए योग का महत्व विषय पर नवजात शिशु और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मिथिलेश कुमार से की गई बातचीत। उन्होंने न सिर्फ योग के बारे में बल्कि बच्चों के खान पान पर भी ध्यान रखने की बात कही। हमें उम्मीद है कि आप सब भी इस भेंट वार्ता का लाभ जरूर उठाएंगे। और चलते चलते एक खूबसूरत गीत कटी पतंग से आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में।

वक्त का ये इशारा है कि हमें आपसे लेनी होगी विदा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इसी दुआ और शुभकामनाओं के साथ अपनी रेडियो दोस्त जयश्री को दीजिए विदा। पुनः मिलने के वादे के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जोहार।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पत्रिका कल्याणी अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM बैंड के 102.4 MHz पर।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मन भावन कार्यक्रम से।

कार्यक्रम फिल्म संगीत में आप तमाम श्रोता साथियों का विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज के फिल्म संगीत का पहला गाना हमने लिया है बलमा फिल्म से, आशा भोसले और कुमार सानू की मिली जुली आवाजों में। समीर का लिखा गीत है और संगीत नदीम श्रवण का।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की मिली जुली आवाज़ों को अभी आप सुन रहे थे कभी कभी फिल्म के इस गीत में। गीत रचना साहिर लुधियानवी की थी और संगीत निर्देशन था खयाम का।

अभिमान फिल्म से लिए इस गाने में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों को। इसके गाने के बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने और इसकी धुन बनाई थी सचिन।

0: गुलजार के लिखे गीत को संगीत से सजाया था आर डी बर्मन ने। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, और अभी आप सुन रहे थे घर फिल्म का ये गीत।
1: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: हेलो डॉक्टर,
4: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
3: हेलो डॉक्टर।
4: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: संदेश के बाद हम हाजिर हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से कार्यक्रम फिल्म संगीत के शेष भाग के साथ।

हिना फिल्म से लिए इस गीत में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए सुनते हैं फिल्म प्रेम रतन धन पायो से। आवाजें हैं शान और साथियों की, इरशाद कामिल का लिखा गीत है और हिमेश रेशमिया का संगीत।

प्रेम रतन धन पायो इस फिल्म के गाने के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत की आज की प्रस्तुति से मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त विभा को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। कार्यक्रम फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8:45 होने ही वाले हैं। अगले कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है।

0: भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
2: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 235,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ। ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
5: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार केरल माहे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले दो दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जम्मू कश्मीर तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons US Charge d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over US strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. Mr. Shah directed for creating impregnable multi-layered security grid along the pilgrimage route with the coordinative efforts of the Central Armed Police Forces, Jammu and Kashmir Police and all security agencies. Our correspondent reports that the Amarnath Yatra will begin on 3rd of July and conclude on the 28th of August.
2: Union Home Minister emphasized to further strengthen the security framework with extensive use of modern technologies such as drones, CCTV surveillance and advanced monitoring systems. Mr. Shah added that the senior officers of CAPF and the Jammu and Kashmir Police will continuously monitor arrangements at campsites throughout the pilgrimage route. He also emphasized for ensuring adequate arrangements for all essential services including pilgrim registration, accommodation, healthcare facilities and disaster management. With Dipendra Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
6: Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata on the occasion of 12 years of the NDA government at the centre. Mr. Adhikari said people are giving their lands for fencing along the Indo-Bangladesh border. He said that by giving fair price, West Bengal government is taking the lands from common people and handing it over to the BCF. The Chief Minister said the land transfer process is ongoing and described the project as a matter of national security.
7: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
6: India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke Vikas Ke Jan Kalyan Ke. Today, we focus on the measures taken by the government towards positioning India as a global leader through its foreign policy. A report.
8: Over the last 12 years, India emerged as a formidable global leader driven by bold initiatives that fuse ambition with action. Prime Minister Narendra Modi's leadership has anchored these efforts in responsibility and inclusivity, ensuring India's voice resonates across global platforms. India strengthened its old relationship while making new friends, infusing fresh energy into India's foreign policy while keeping the principle of India first supreme. Humanitarian assistance and disaster relief operations are a vital part of India's global engagement. Cyclone Dithwa made landfall on the eastern coast of Sri Lanka in November 2025, leaving hundreds dead, thousands displaced, and critical infrastructure damaged. Standing in solidarity with the people of Sri Lanka, India launched Operation Sagar Bandhu to provide immediate humanitarian assistance and disaster relief to Sri Lanka. The effort brought together the Indian Navy, Air Force, Army, and Disaster Response Team in a coordinated rescue and relief operation. India provided comprehensive support to Sri Lanka, including immediate relief supplies, medical aid, search and rescue assistance, and restoration of damaged infrastructure. Thanking the Indian government, Sri Lanka's Deputy Minister for Ports and Civil Aviation, Janith Ruwan Kodithuwakku, stated that India had shown immense warmth and solidarity toward the people of Sri Lanka.
9: We are very thankful to India because since the day this Dithwa happened, opened their warm heart to us and we really appreciate their help. We are very good friend of India and we would like to extend our thanks to Indian government and the Indian people on behalf of Sri Lankan government and the Sri Lankan people.
8: The major highlight of India's foreign policy came during the COVID-19 crisis. India launched the Vaccine Maitri initiative as a testament to its human-centered diplomacy. Since January 2021, India has supplied over 30.12 crore vaccine doses to 99 countries and two UN bodies. This included 1.51 crore doses gifted to over 50 nations and 5.2 crore doses through COVAX mechanism. Talking to Akashwani News, Dr. Jyotishko Biswas, a physiotherapist and yoga teacher based in Bangladesh, said that the rapid dispatch of the vaccines from India was a profound gesture of goodwill.
10: At that time, India made a fast response and sent the vaccine to us. us. I also took that vaccine. It was very good for us, our relatives and all the countrymen. It was a very nice gift from India to the world. So for this, we are very grateful. Best wishes to the Indian government and the people. Many, many thanks to India.
11: India government and people ke liye bahut bahut dhanyawad.
8: In the last 12 years, India has stepped up as a global leader through impactful initiatives like Vaccine Maitri and Operation Sagar Bandhu that blend vision with execution. Its commitment to humanitarian aid and regional partnership is anchored in the civilization ethos of Vasudev Kutumbakam. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
6: Union Minister for Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat has said that the Modi government is committed to the conservation and restoration of India's cultural heritage. In an exclusive interview with Akashvani News, he said, under the mission to bring back stolen or smuggled antiquities from abroad, 670 sculptures and artifacts have been brought back so far. Mr. Shekhawat expressed confidence that this number will cross 1,000 by the end of this year.
12: Under the leadership of the Prime Minister, this initiative has been launched in mission mode under the name Gyan Bharatam Mission. We are digitizing our manuscripts. In this vision, digitization does not merely mean creating a digital copy or storing a digital version of these manuscripts. Rather, the objective is to bring them into a computer-readable format.
6: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in and download the News on AIR app. External Affairs Ministry today summoned Chargé d'Affaires of the United States, Jason Meeks, and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. This has already resulted in the tragic and avoidable loss of three Indian lives. Our correspondent has the details.
13: The U.S. envoy was called in by Additional Secretary Americas in the Ministry of External Affairs in New Delhi. The ministry said in a statement that it once again conveyed its deep concern over the use of lethal and deadly force against civilian shipping. The ministry said such actions are unacceptable and undermine the safety, security and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. The U.S. Chargé d'Affaires was requested to convey India's strong concerns to his authorities and to ensure that U.S. forces operate in the region take all necessary measures to prevent the loss of civilian life. Suparna Saikya, Akashvani News, Delhi.
6: As Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron prepare to jointly inaugurate the Bharat Innovate Summit in Nice, France on Sunday, the spotlight is on India's remarkable startup journey over the past 12 years. From around 350 recognized startups in 2014, India has emerged as the world's third largest startup ecosystem with over 255,000 DPIIT recognized startups and 131 unicorns. A report.
14: Several reforms brought by the government over the last 12 years, from the launch of Startup India, establishment of Atal Incubation Centers, the Fund of Funds, and the simplified compliance norms, have transformed India's entrepreneurial landscape beyond recognition. The ecosystem today spans deep technology, space, defense, agri-tech, health tech, and clean energy. Among those that will be spotlighted at the summit is MedUp Plus, a medtech startup that has developed a comprehensive, portable eye screening device now being adopted across India, Europe, and USA. Built mostly on government support without any venture capital funding. Talking exclusively to Akashvani News, co-founder Ravi Kiran spoke about how the government platform gave their innovation the visibility.
15: When we started, the early stage startups were given a high priority and the government was focusing more on early stage startups, and the government is learning very quickly. Modi ji has started putting a lot of efforts towards not just the early stage startups but also the mid stage.
14: It may be noted that India-France Year of Innovation, of which this summit is the centerpiece, seeks to deepen collaboration between the two nations in emerging technologies, startups, and scientific research. This is Shailesh Menon, Akashvani News, Nice, France.
6: A Seoul court has sentenced former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison today after finding him guilty of ordering drone incursions into North Korea to escalate tensions and justify his December 2024 martial law declaration. The Seoul Central District Court convicted the jailed former president on charges of benefiting the enemy and abuse of power. Former Defense Minister Kim Yong-un also received a 30-year sentence for his role in the operation. On to sports. In badminton, PV Sindhu has stormed into the women's singles semi-finals of the Australian Open tournament in Sydney. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Shen Tzu-Yu in a one-sided quarter-final clash today. Sindhu will next face top seed Akane Yamaguchi of Japan in the semi-final match. Yamaguchi defeated India's Tanvi Sharma in the quarter-final clash today. The 10th edition of the ICC Women's T20 Cricket World Cup will begin tonight, with hosts England taking on Sri Lanka in the opening match of the tournament at Edgbaston, Birmingham. The match is scheduled to begin at 11 p.m. Indian Standard Time. Indian women's team will start their campaign against arch rivals Pakistan on Sunday. In FIFA World Cup 2026, co-hosts Canada will be up against Bosnia and Herzegovina in a Group B clash at Toronto Stadium tonight. The match will start at 12:30 a.m. Indian Standard Time. The encounter marks the first ever World Cup meeting between the two nations. Benchmark domestic equity indices ended today's trading session with strong gains of around 2%, driven by hopes of de-escalation in West Asia. The India Meteorological Department has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya tomorrow. Heavy rainfall is also expected over other parts of northeast India, Bihar, Kerala, Mahe, Odisha and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. The Met Department said that the southwest monsoon has further advanced into the entire northwest Bay of Bengal, some more parts of West Bengal, Bihar and some parts of Odisha and Jharkhand. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi highlights

0: on 928-909-4044.
1: Current Affairs.
2: करंट अफेयर्स, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। रात के 10 बज चुके हैं श्रोताओं, और अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

बाजार फिल्म के इस गाने में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और तलत अजीज़ की आवाज़ों को। मखदूम मोइनुद्दीन का लिखा गीत और संगीत खयाम का।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की मिली जुली आवाज़ों में हंसते जख्म इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे। इस गाने के बोल लिखे थे कैफ़े आज़मी ने और इसकी धुन बनाई थी मदन मोहन ने।

प्रेम पर्वत फिल्म के इस गीत में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। शब्द रचना जानेसार अख्तर की थी और संगीत दिया था जयदेव ने।

कार्यक्रम का अगला और आखिरी गाना हमने लिया है फिल्म लेकिन से लता मंगेशकर की आवाज़ में। गुलजार का लिखा गीत और संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का।

लेकिन फिल्म के इस गाने के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज की प्रस्तुति से अपनी रेडियो दोस्त विभा को अनुमति। हम फिर मिलेंगे इस वादे के साथ। नमस्कार। कार्यक्रम फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात के 10:30 हुआ चाहते हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित जगदीश प्रसाद का ख्याल गायन राग हमीर एवं दादरा में। आइए सुनते हैं इनकी पहली प्रस्तुति राग हमीर।

शास्त्रीय संगीत के एक कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित जगदीश प्रसाद का ख्याल गायन राग हमीर में। आइए सुनते हैं इनकी अगली प्रस्तुति।

0: आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 11 बजने ही वाले हैं। आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे समाचारों का प्रसारण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।